0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

0: वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को अभी आप घर में आते चलिए सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं नमस्कार आपको याचना
1: नमस्कार या सभी सुनने वालों को नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगने जा रहा है फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्र और सरकारी नेता तथा ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे इसमें मॉरिशस का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा नवाचार और विकास के लिए साझेदारी के विषय के साथ फ्रांस इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठक में भाग लेंगे बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण के बाद आर्याना वामाही ने आधिकारिक रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला वे इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं हालांकि उनकी नियुक्ति हाल में हुई है लेकिन उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहले से तैयार हैं और उन्हें अपने परिवार तथा मंत्रिमंडल के सहयोग

0: उद्योगियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को हॉलिडे इन मॉरिशस मोंट्रेज़ो में किया गया। इसमें मॉरिशस नौजवान शामिल हो रहे हैं। इस लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। विदेश की खबरों में अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कल एक हादसा ज्यादा गंभीर रूप लेने से पहले थमा। एयरपोर्ट का सुरक्षा घेरा तोड़कर रनवे पार कर रहे एक व्यक्ति की विमान से टकराकर मौत हो गई। इस हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। लॉस एंजेलिस जा रही फ्रंटियर एयरलाइन के विमान के उड़ान भरते समय यह हादसा हुआ। टक्कर के तुरंत बाद विमान की इंजन में आग लग गई, कैबिन में धुआं भरने लगा। टेक ऑफ तुरंत रोक दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इसके अलावा हमारे इलाके पर स्थिर हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। रात के दौरान ऊंचाइयों पर फिर से बादल घिराएंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 18 से 20, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:29 पर, शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।
1: RM3 Radio.

सदकल्लाहुल अज़ीम। सामीन, अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की। पेश खिदमत है एक हम्द, आइए समाअत करते हैं।

You're listening to RM3 Radio Man.

बैठको तो घनी मळी शहर मां बैठको तो घनी मळी पण मारा गामडा जेवो डायरो नहीं हो रोज दी नवो उगतो हशे रोज दी नवो उगतो हशे पण मारा गामडा जेवो वायरो नहीं हो।

0: पीके?
1: यस मामा।
0: पापा बोलावे छे। कम ऑन माय बॉय।
1: कमिंग।
0: पीके ने बाय कहू?
1: बाय पीके, स्टोरी अजी बाकी छे।

तो चलिए शुरू हो, 10:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। आज है रविवार, रविवार 10 मई 2026। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति, चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। शुरुआत जो है हम हमेशा भगवान गणेश जी का नाम लेकर करते हैं। जो भी विघ्न है, जो भी बाधाएं हमारी ज़िंदगी में, वो सब दूर करते हैं। और जो भी नए काम करते हैं, सबसे पहले उन्हीं का नाम लेते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।

0: चलिए श्रोताओं, आज का दिन समर्पित है प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता के देवता सूर्य भगवान को। जिस तरह सूरज बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रेम फैलानी चाहिए। श्रोताओं, सूर्य केवल रोशनी नहीं देती, वे जीवन देती है। पेड़ पौधे, प्रकृति, ऋतुएं, सब सूर्य की ऊर्जा से चलती है। सूर्य भगवान को सत्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सुबह की पहली किरण को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि सूर्य की पूजा करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो चलिए, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही भगवान सूर्य आदित्य कहलाए। इनके 12 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जो क्रमशः इस प्रकार है: इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भगवान, विवस्वान, विष्णु, अंशमान, वरुण तथा मित्र। भगवान सूर्य अपने पहले स्वरूप से देवलोक में शासन करते हैं, दूसरे से प्रजा की रचना करते हैं, तीसरे से मेघों की व्यवस्था, चौथे से जगत पालन, पांचवें से औषधियों को रोगनाशक शक्ति देते हैं, छठे से प्राणों का नियंत्रण, सातवें से धरती की व्यवस्था, आठवें से अग्नि पर नियंत्रण, नवें से प्रायः अवतार लेते हैं, दसवें से सुख वैभव देते हैं, ग्यारहवें से जल में जीवनी शक्ति भरते हैं, बारहवें से चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित रहते हैं, ऐसा शास्त्र मत है। इनके साथ ऋषि, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सर्प प्रत्येक मास में अलग अलग इनके साथ रहते हैं। ऋषि लोग स्तुति करते हैं, अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हैं, गंधर्व संगीत अलापते हैं, नाग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की बागडोर संभालते हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं। इसी से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल, थल, नभ तीनों में अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं। मौसम, प्राणी, प्रकृति, वनस्पति सब सूर्य पर ही आधारित लक्षित होते हैं। भगवान सूर्य 12 महीनों में किस प्रकार विद्यमान रहते हैं, शास्त्रों में वो इस प्रकार कहा गया है: चैत्र मास में भगवान सूर्य धाता स्वरूप है। इस समय अपनी सभी किरणों में वे प्रकाशित होते हैं। इनके साथ पुलत्स्य ऋषि, वासुकी नाग, रथमृत नामक यक्ष, ऋतुस्थला नामक अप्सरा, हेति नामक राक्षस तथा तुम्बरु नामक गंधर्व रहते हैं। वैशाख के महीने में सूर्य अर्यमा स्वरूप होते हैं, जो अपनी 300 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, नारद नामक गंधर्व, पुंजेस्वत्थला नामक अप्सरा, प्रेहित राक्षस तथा कच्छवीर नाग रहते हैं। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य मित्र स्वरूप होते हैं, जो अपनी 200 किरणों से चमकते हैं। इस मास में इनके साथ अत्रि ऋषि, रथस्वन यक्ष, हाहा गंधर्व, मेनका अप्सरा, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस आदि रहते हैं। आषाढ़ में सूर्य वरुण रूप होते हैं। 500 किरणों से सुसज्जित वशिष्ठ ऋषि, हुहु नामक गंधर्व, सहजन्या अप्सरा, नागराज तथा रथ नामक राक्षस और रथचित्र नाम के यक्ष के साथ होते हैं।

चलिए श्रोताओं, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य भगवान के बारे में, जो हमें प्रकाश देते हैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें जो है प्रकाश प्रदान करते हैं। आपको पता है कि भगवान सूर्य जो है लाल फूल, गुड़ और गेहूँ उनको बेहद ही पसंद है, और भक्त लोग जो है उन्हें ये अर्पित करते हैं। और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन जब हम इस मंत्रों का जाप करते हैं। सूर्य की उपासना से पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता और आत्मबल जो है बढ़ता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, 11:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। कहते हैं कि भक्ति और सकारात्मक भरे माहौल के साथ जो है हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और याद रखिए हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीद लेकर अवश्य आती है। आपको हम कहेंगे शुभ दिवस और ये अंतिम जो है भक्ति गान आपके नाम कर रही है। कार्यक्रम का समापन जो है हम एकार्ती के साथ कर रही है। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

我们都向往简单的陪伴，也期待人海里的相逢。所有美好的缘分都始于一场不期而遇。一起来听孙燕姿的《遇见》。

0: आइए सुनते हैं समाचार गीता जी के साथ। आपको नमस्कार गीता जी।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार। वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को

0: डे इन मॉरिशस मोत्रेसो में की गई। इसमें मॉरिशियन नौजवान शामिल हो रहे हैं। इस लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। मंत्री ने अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों में ज्यादा निवेश पर भी बात की। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेसिजन एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तनाव, परिवहन लागत और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का भी उल्लेख किया और कहा कि मॉरिशस को अपनी खाद्य सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने की आवश्यकता है। मॉरिशस में आवारा कुत्तों की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। उनके सटीक आंकड़ों पर हालिया जानकारी उपलब्ध न होने के बावजूद अधिकारी मानते हैं कि स्थिति लगातार बिगड़ रही है, खासकर जानवरों को छोड़ दिए जाने और नसबंदी की कमी के कारण। पशु संरक्षण से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रही हैं। उनका मानना है कि वर्तमान स्टरिलाइजेशन अभियान आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि ये समस्या अब सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी बन चुकी है। मैदान में सक्रिय संगठन बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जता रहे हैं। और विदेश स्तर पर तमिलगा वेट्री कसगम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राज्य की दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के लगभग 6 दशकों से चले आ रहे बारी बारी के शासन का अंत हो गया है। विजय ने आज सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ली। उनके साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें टीवीके के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। विजय एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कांग्रेस एक सहयोगी के रूप में शामिल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विजय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। एबिलक्स तो रॉयल होड फ्लोरियाल में 85 साल की 85-year-old की श्रीमती फुलेस्री अबिलक, पैदाइश नाम बिसेसर और जो मैडम अबिलक से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर अबिलक्स तो वायल रोड फ्लोरियाल से उठाकर बिगाहा किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: You're listening to RM3 Radio Mano.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, 12:09 हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, सिस्टर अकाल। और रविवार की सुनहरी दोपहर में आपका दिल से स्वागत कर रहे हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुहाना सफर में। हमेशा की तरह मैं हूँ देवीना और अगले पूरे 3 घंटों तक हम साथ लेकर चलेंगे आपको यादों, संगीत और मुस्कुराहटों की इस दुनिया में जहाँ हर गीत दिल की धड़कन बन जाता है। सो तैयार हो जाइए, कुछ पुराने गाने जैसे सदाबहार गाने, 60s के ऊपर अगर हो सके तो, 70s की मासूमियत, 80s की रंगीन धुनें।

साथ में 90s की रोमांटिक यादें लेकर इस संगीत सफर में। सो लंच का टाइम है, बन अपेची शुभाहार, लंच हो, परिवार का साथ हो, फ्रेंड्स का साथ हो, या फिर बस संगीत का जादू, आज की दोपहर होगी बिल्कुल खास। अभी आपने सुना फिल्म सन्नाटा से लिया गया एक बहुत ही प्यारा सा गाना, मैं हमेशा से ये गाना पसंद था और पसंद रहेगा। अलका याग्निक साथ में थे उदित नारायण साहब। जी अगर आप साथ दे रहे हैं तो आपका दिल से स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर से, वार्म वेलकम टू यू ऑल। या फिर 5250-6200-5250-6200 पर आप हमसे बात कर सकेंगे या फिर मैसेज भेज सकेंगे और कहिए ना क्या हो रहा है आज। और कुछ इलाकों में मौसम जैसे कहेंगे बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में हल्की सी धूप है, मगर हवा भी है और स्टिल गर्मी तो है ही, मगर यहाँ पर जो है मौसम का सिलसिला जारी रखते हैं। मौसम की तरह आप भी कभी इधर से उधर अगर जा रहे हो और साथ दे रहे हैं हमारा तो बस दिल से शुक्रिया। और वैसे कहते हैं पुराने गीतों की मिठास ही कुछ और है दोस्तों, ये गाने सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, सीधे दिल में उतर जाते हैं। और अब वक्त है एक ऐसे गीत का जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिल्म है परवरिश, आशा जी की आवाज़ में, साथ में चुलबुले से किशोर दा। और कहेंगे अगर आपको, आइए शौक से हमें फ़ोन कीजिए, शौक से हमें मैसेजेस कीजिए और कहिए ना आपको क्या सुनना है, किसके नाम डेडिकेशंस भेजना है, बस हो जाए तैयार अगले गाने के लिए।

0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
1: जैसे बहुत जल्दी आ गए, आदत बन गई है।
2: अरे नहीं बाबा, जरा बाजार चला गया था सामान खरीदने, वहीं देर हो गई। देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाया।
1: क्या लाए हो बता। पालना
2: आने वाले मेहमान के लिए।
1: अरे वो क्या पालने में सोएगा?
2: हाँ, नहीं तो फिर कहाँ सोएगा?
1: मेरी गोद में?
2: ना, वो तो पालने में सोएगा। और और और तुम्हारी गोद में सर रख के मैं सोऊंगा। उसके बाद तुम हम दोनों को लोरी सुना के सुला दोगे।
1: अरे वाह, तुम दोनों सो जाओगे और मैं जागती रहूंगी? कभी नहीं।
2: अरे बाबा, तुम सो जाओगे तो उसे दूध कौन पिलाएगा?
1: ठीक है, तुम उसी के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं।
2: अरे भाई, तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और किसके बारे में सोचेंगे? तुम ही तो सब कुछ हो। ये देखो, उसके लिए अगर पालना लाया हूं तो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूं।
1: कहां दिखा? सिल्की है?
2: हाँ।
1: कौन सा रंग?
2: लाल धारी वाली। जाओ जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ।
1: क्यों?
2: अरे वाह, भूल गए? अरे भाई, आज हमारी शादी की सालगिरह है, जरा बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, खुशियां मनाएंगे।
1: अच्छा, तुम्हें शादी की तारीख याद है? मैं तो समझती थी ड्यूटी के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता।
2: पैर तानेबाजी की?
1: नहीं नहीं, यूं कह रही थी। चलो।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: बारह बजकर 24 मिनट और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर। इस प्रोग्राम में आप सबों का हम फिर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस लेजी लेजी संडे आफ्टरनून शो। अपने प्यार के सपने सच हुए, ये था ब्यूटीफुल सा गाना, खूबसूरत का गाना, और लिया गया था मूवी थी बरसात की एक रात। और इसके बाद एक और खूबसूरत गाना हम पेश करने वाले हैं। कुछ गीत हवा बनकर छू जाते हैं तो कुछ यादें दिल में बस जाते हैं, और कुछ लोग रेडियो के साथ हर रविवार अपने बन जाते हैं, जैसे कि आप लोग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। हर रविवार को हम आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए, और आप भी आप बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, बिजी भी हो, फिर भी आप हमारा साथ देते रहते हैं। दिल से शुक्रिया आप सभी को। अब बढ़ते हैं श्रोताओं की फरमाइशों की ओर, और यह प्यारा जो गीत है बजने वाला है फ्रॉम द मूवी शोला और शबनम, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम्हारी। अगर आप थाम ले तो कोई भी बाजी आप जीत सकोगे। और ये जो है वेजोंपा की माला जी की ओर से किरण, कबीर, कनिष, कनील, शिव और साथ में सत्यम के लिए, पूरे परिवार के लिए। एंड ऑल्सो हमेशा की तरह पहले पहले ही हम मैसेजेस भेज देती हैं ज्योति और शातु बिनारस, ऑल्सो फॉर आशनी, रेखा, सुरेखा, माधव फैमिली, एंड स्पेशली फॉर मी टू। थैंक यू सो सो मच ज्योति जी, शोला और शबनम, रफी साहब, साथ में लता जी।

0: इजाजत हो तो सुना
1: दूं। You're listening to RM3 Radio Mana।

12:45 हुए हैं दोस्तों, अभी तक लंच ले रहे हैं बस बना पेची वन से गेन, और अगर घूम रहे हैं बाजार में होंगे और खरीदारी कर रहे हैं सब्जियों की या कुछ सामानों की, बस आज का जो दिन है मस्त मस्त होता है, कुछ खरीदारी करके और आराम से यहाँ वहाँ जाना, नो रश एट ऑल। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी तरह जो रविवार को भी सवेरे उठकर काम पर जाते हैं, और क्योंकि हमें अपना जब काम है ना उस वह काम नहीं होता, वह प्यार होता है आप दोस्तों के लिए, आप बिजनेस के लिए। और अगर आप कोई भी काम ना प्यार से करें तो बस उसको करने में ना अलग ही मज़ा आता है। जैसे यहाँ पर आकर ना हम सवेरे उठे, मगर जब यहाँ पर आकर म्यूज़िक का साथ होना और आप लोगों का साथ हो तो बस जो दिन है ना ऐसे ही फुर से उड़ जाता है और पता ही नहीं चला कि आज रविवार है। अजी आज संडे है फिर भी हम काम कर रहे हैं, बस आप लोगों का साथ है। थैंक यू सो मच। और रविवार को हो और थोड़ी और मस्ती हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब माहौल को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं, एक अलग सा गाना है। ये गाना जो है ख़ास तौर पर सभी माओं के लिए। वैसे मॉरिशस में लॉस संडे ऑफ मे को हम मातृ दिवस मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं। मगर ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे देश होते हैं जैसे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर जैसे स्विट्ज़रलैंड हो, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ना आज 10 मई है ना, आज वे मना रहे हैं मदर्स डे, मातृ दिवस। सो क्यों ना आपको डबल विश करें, एंड ऑफ मे तो विश करेंगे ही, मगर आज भी सभी माओं को, आप सभी प्यारी माताओं को बेस्ट विशेस फॉर ए हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को सलाम है। जैसे भी हो, किसी भी हालात में हो, आई एम श्योर आप लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों की देखभाल करने में, उनको सही मार्ग दिखाने में। और कोई माँ बुरी नहीं होती, कभी कहते हैं ना हालात बुरे होते हैं, मगर अपनी माँ, बच्चे अगर हमें सुन रहे हैं, बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो, अपनी माँ का ना हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं ना तब सोचते हैं माँ को क्या पता, मगर जब हम माँ बन जाते हैं ना, पेरेंट्स बन जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ माँ सही थी। सो अब सभी माओं को, मैं भी माँ हूँ तो सभी माओं को हम कहेंगे हैप्पी मदर्स डे। एंड स्पेशली रंभा जी की ओर से, हेलो रंभा जी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, उन्होंने कॉल किया, सो स्वीट ऑफ यू, और कह रही है स्विट्ज़रलैंड में मौसम तो बड़ा बहुत सुहाना है, अच्छा है, गर्मी है मगर स्वीट सी गर्मी है, सो वंडरफुल वेदर में रंभा जी हमें याद कर रही है, थैंक यू सो मच। सो मदर्स डे की इस खुश के अवसर पर वे सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे वो कह रही है, और आप सभी को हम कहेंगे ढेर सारा प्यार भेजते हैं आप सभी को, आप परिवार में प्यार बांटते रहे और हमेशा हमारा साथ देते रहे रंभा जी, एंड सभी माओं के लिए ये गाना।

जहाँ माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ, और माँ को सेलिब्रेट करने के लिए किसी विशेष दिन की ज़रूरत तो है नहीं, मगर फिर भी एक ऐसा दिन आता है हर साल, और इस साल मॉरिशस में मनाएंगे 31st of May को, मगर आज इंटरनेशनली हम मना रहे हैं मदर्स डे। सो आप सभी माओं को, प्यारी प्यारी से मम्मीज को हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, बॉन कुराज, क्योंकि मम्मी बनना इतना आसान नहीं हम जानते हैं, और हर रोज़ बच्चे बड़े हुए हो जाए तो हम मम्मी ही रहते हैं, और हमेशा अपने बच्चों की सही सलामती के लिए हम दुआ करते रहते हैं, मगर अपने लिए भी जिया कीजिए, अपनी देखभाल भी किया कीजिए, और हाँ ये सही है कि घर पर काम होते हैं, खाना बनाना पड़ता है, नौकरी पर जाना पड़ता है, और हम हमेशा इसी सोच में रहते हैं कि पता नहीं क्या मिस किया, बच्चों को, बच्चे के लिए क्या नहीं किया, पति देव के लिए क्या नहीं किया, परिवार के लिए क्या नहीं किया, मगर फिर भी एक मिनट, एक समय होना चाहिए फॉर, जैसे कहते हैं मी टाइम, हमेशा मी टाइम, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए अपने लिए, ठीक है। तो बस अपनी खुशी के लिए आप कुछ करना चाहो तो कीजिएगा। अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, फिल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे, मुकेश साहब की आवाज़ में, साथ में लता जी। ये वादा करें, ये क्या वादा करेंगे, और ये गाना जाएगा स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ बाबू अनाटवा जब कटोबोन, सभी परिवार के लिए, सभी फ्रेंड्स के लिए, सभी आर एम फ्री लिसनर्स के लिए।

आरती मुखर्जी चंदानी मुखर्जी साथ में शिवांगी की आवाज़ों में एक बहुत खूबसूरत सा गाना। वैसे ये गाना तो चलता रहता है एमबीसी रेडियो पर, मगर ये गाना इतना ऑन डिमांड है क्योंकि स्पेशल के लिए, स्पेशली माताओं के लिए ये गाना है, तो जाहिर सी बात है कि लोग इस गाने की मांग अवश्य करेंगे, करते रहेंगे। सो वंस अगेन टू ऑल द मदर्स हु आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, अगर आपका बर्थडे है आज तो हम आपको विश करते हैं, ढेर सारा प्यार भेजते हैं, मगर खास तौर पर ये जो मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून आपको अनीता जी और फिकों फ्लाक का, आज है आपने मैसेज भेजा है कि मेरी आंट ग्रांटी बालाजी का बर्थडे है, वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी, और आज उसकी बेटी इंदिरा की ओर से श्यामा माला रूमिला जो कनाडा में है, बेटे अशोक सभी परिवार की ओर से दे बेस्ट विशेष भेज रहे हैं फॉर आंटी जी, और ये बर्थडे सॉन्ग वे बांग कर रहे हैं साजन बिना सुहागन से दिया गया। सो हैप्पी संडे आपको भी, सभी रेडियो मनोरंजन की टीम को भी थैंक यू सो मच, आपको भी अनीता जी, सो हैव ए ब्लेस्ड संडे एंड एंजॉय दिस सॉन्ग, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी एंड ऑल द डियर मामाज़।

लता जी की प्यारी आवाज में ये अगला गाना वो भूली दास्तां। और शुभ रविवार आपको कविता जी और मोचिदा, ये अपने लिए आपके लिए संजो का प्यार भरा गाना। और ये गाना हमें ले जाएगा 1 बजे के समाचार के बाद। दूसरे घंटे में हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी।

0: सुनते हैं समाचार करुणा जी के साथ। आपको नमस्कार करुणा जी।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार। कल नैरोबी में अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन शुरू होगा। अफ्रीका फोरवर्ड के तहत लगाए जाने वाले इस सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 30 राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे। इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम भी शामिल होंगे। सम्मेलन मुख्य रूप से नवाचार, सतत विकास, ऊर्जा परिवर्तन और AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित

0: होगा। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों और फ्रांस के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉरिशस के नेशनल कैंसर सेंटर और डॉक्टर जीतू अस्पताल में कैंसर की लगभग 10 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। ये ऑपरेशन भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर सरावाना राजा मानिकम और डॉक्टर दीप्ति मिश्रा के एक सप्ताह के मिशन के तहत किए गए। दोनों विशेषज्ञ 11 मई तक मॉरिशस में होंगे। शुक्रवार को नेशनल कैंसर सेंटर में आयोजित एक बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने मॉरिशस की स्वास्थ्य प्रणाली को भारत द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना की। उनके अनुसार ये जटिल सर्जरी जो बिना रुके 8 से 10 घंटे तक चल सकती हैं, पहले मरीजों को विदेश भेजकर ही करानी पड़ती थी। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख थिरु विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद विजय ने उसी मंच से एक भाषण देते हुए 3 बड़े ऐलान किए, जिसमें 200 यूनिट की फ्री बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स और ड्रग्स कंट्रोल के लिए स्पेशल यूनिट गठन शामिल हैं। और वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज एमवी होंडियस पहले यात्री की मृत्यु के लगभग 1 महीने बाद आखिरकार टेनरिफे पहुंच गया है, जहां चिकित्सा दल और यात्रियों के स्वागत और स्वास्थ्य जांच के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन में कैथरीन वेस्ट ने कैबिनेट मंत्रियों से कर स्टॉमर के नेतृत्व को चुनौती देने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो स्वयं ऐसा करेंगी। इस बीच इसके लिए उन्हें कम से कम 81 लेबर सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: अबेलक्सटो रॉयल रोड फ्लोरियाल में 85 साल की 85-year-old श्रीमती फुलेश्री अबेलक, श्रीमती फुलेश्री अबेलक पैदाइश नाम विशेषर जो मैडम अबेलक से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान अबेलक्सटो रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगागा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: You're listening to RM3 Radio Man.

0: RM3 Radio.
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
2: 1:10 हुए हैं। वेलकम टू द सेकंड आवर ऑफ सुहाना सफर प्रोग्राम लेजी संडे आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर कोर्स और आज की यह संगीत भरी दोपहर लगातार बनती जा रही है और भी खूबसूरत। अगर आप खाना बना रहे हैं या खाना

खा रहे हो या परिवार के साथ बैठे हैं या सफ़र में होंगे अपनों के साथ या अकेले ही ऐसे ही हमारा साथ दे रहे हैं तो वाओ, आपका सफ़र तो सुहाना होगा तो होगा ही, मगर हम भी यहाँ पर इस स्टूडियो में बैठे बैठे हम तो अकेले हैं, मगर आप समों से बातें कर रहे हैं, इतने खुश हैं कि क्या कहें, और संगीत का साथ हो, आप सभी दोस्तों का साथ हो तो हमें और क्या चाहिए। और वैसे भी पुराने गानों की एक खास बात होती है, उन्हें सुनते ही लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी धीमी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। जैसे उस ज़माने में ना 70s 80s के ज़माने में जब कोई अच्छा सा गाना आता था तो हर एक गाना हम कैसेट पर सुनते थे और अच्छा लगता था और हमें हर एक शब्द याद आता था। और मेरे ज़माने में ना, मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे पास एक नोटबुक था जिसमें मैं ना सभी जो गाने हैं जो मेरा फेवरेट होता था सभी गानों का के जो लिरिक्स थे हम लिखते थे, हम गुनगुनाते थे जैसे हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं पुस्तकों की। तो बस उस समय पढ़ाई के साथ साथ हमें म्यूज़िक भी अच्छा लगता था, गाने भी अच्छे लगते थे, और एक तरफ देखा जाए तो यही है जिसके ज़रिए हमें अच्छा लगता था पढ़ना और आगे बढ़ना ज़िंदगी में। तो पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही, और पढ़ाई करना है तो माँ का सम्मान भी होना तो चाहिए। और ऐसे में जैसे हमारे लिसनर्स ने आपको पता चल गया कि इंटरनेशनल जो आज मदर्स डे मना रहे हैं, मातृ दिवस आज है इंटरनेशनल लेवल, जैसे सभी जो कंट्रीज़ हैं आउट, जैसे वहाँ पर है यूरोप की कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पर आज स्पेशल मदर्स डे मना रहे हैं। सो बस आप भी, आपको डबल सेलिब्रेशन तो बनता ही है। सो अगला जो गाना है माँ के लिए ही है, तो गुड आफ्टरनून आपको प्रकाशवती जी फ्रॉम बेल्जियम, और वे कह रही हैं हैप्पी मदर्स डे। आँखों का पानी और दिल की कहानी माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता है, तो बिल्कुल सही है प्रकाशवती जी। कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मम्मी को ही बता सकते हैं, मम्मी ही समझ सकती है। कभी कभी मम्मी जो है वो नाराज़ होती हैं जब बच्चे बदमाशी करते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करती। माँ यही चाहती हैं कि उसका बच्चा जो है उसमें अच्छे अच्छे से मैनर्स हो, अच्छे से बात करे, और लोगों की बातें छोड़ो मगर वो बच्चा बड़ा होकर या बच्चे से ही, बचपन से ही वो अच्छा बने, यही हम सब माओं की दीदी ख्वाहिश होती है। सो बस हैप्पी मदर्स डे, और ये गाना आप सभी माओं के लिए वंस अगेन। फिल्म है लाडला, उदित नारायण साहब, जोस्ना हर्डिकर।

हाँ जी, हमारे अंगने में आपका क्या काम है, आपका काम ही है, क्योंकि आपको सुनाना है हमारे आपके फेवरेट गाने, और साथ में हमारे प्लेलिस्ट में भी काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं, और हम आशा कर रहे हैं कि आप सभी जो है एंजॉय कर रहे हैं इस शो को, हमारे गानों को भी, और साथ में हमारा जो साथ है ना 3 बजे तक चलने वाला है। अभी के लिए 1 बजे तक हमने चलाया कुछ 60s 70s के गाने, इसके बाद अभी के लिए भी उसी ट्रेंड में होगा, 90s के गाने भी जुड़ जाएंगे, और 2 बजे के बाद होगा 90s के खूबसूरत वो प्यार भरे अफसाने और गाने आप सबों के लिए। सो अगर आपको 90s के गाने पसंद हैं तो आप बेशक मांग कर सकेंगे, और 5250-6200 ये है हमारा व्हाट्सएप मैसेज, और साथ में 4028070 ये है नंबर जिस पर हम आपसे बातें कर रहे हैं। सो इतने प्यारे प्यारे कॉल्स के लिए थैंक यू सो मच। अभी के लिए शीला जी बनवेया से, शीला जी नमस्ते, और वे सुनना चाहती हैं मुकद्दर का सिकंदर मूवी का लोकप्रिय गाना, और कह रही हैं अच्छे अच्छे गाने जो हम चला रहे हैं, कुछ एक दो हैं जो बहुत दिनों बहुत सालों से नहीं सुना, तो हमारी यही कोशिश है कि हम ऐसे कुछ गाने लेकर आएँ जो बार बार सुनने को नहीं मिलता, अगर कुछ और कुछ ऐसे गाने होते हैं जो बार बार सुनने को मन भी करता है। सो इसका मिक्सचर है इस प्रोग्राम में, सुहाना सफ़र प्रोग्राम स्पेशल संडे लेजी संडे आफ्टरनून देवीना के संग। सो दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया किसी पे दिल तो क्या कीजिए। सो बस अपनी बेटी यूशी के लिए, साथ में पूरे माकुना फैमिली और हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। लता जी की आवाज, एंजॉय इट।

भूल भैया सा जीवन है और हम अनजान हैं क्या हो कल पता नहीं, मगर आज जो है इसको खुल के जी ले, बस यही है असली जीवन, असला जीवन, असली जीवन और असली जिंदगी। पता नहीं कल क्या हो, आज हम सवेरे उठते हैं, दिन भर सब कुछ अच्छा से चला जाता है मगर रात को कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मगर यही तो जीवन है, कब क्या हो सडनली यही है। तो जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी जो है इम्तिहान लेती है, ज़िंदगी जो है हमें बहुत लोगों से मिलाते हैं और पता नहीं कब हम उनसे बिछड़ जाते हैं। कभी कभी कोई दोस्त बनकर आता है, कभी कोई हमसफ़र बन के आता है, और इसका मतलब नहीं है कि हमेशा लोग हमारे पास रहेंगे। लोग आए हैं दुनिया में, चले जाएंगे, मगर जितनी थोड़ा समय उन्होंने हमारे साथ बिताया है ना, उन सभी घड़ियों का हम याद करते हैं हम बार बार। जैसे कि एक हमारी जो श्रोता थी ना, हमेशा सुनती रहती थी हमारे रेडियो, और हमेशा उनका जो नाम है आपने सुना होगा, सतवंती तिलकधारी जी, हमारे बीच नहीं रही मगर हमेशा उनको याद करते हैं, उनके जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके परिवार हैं, और ख़ास तौर पर उनकी खास सहेली श्यामा रघुनंदन जी अब गौको। और हमेशा जब गीत की मांग करती थी पहले, तो हमेशा सतवंती जी का नाम हमेशा जोड़ती थी। सो उनको याद करते हैं हमेशा, मगर आज खास है क्योंकि आज सतवंती जी का जन्मदिन है, और इस खास अवसर पर उनकी जो सहेलियां हैं, श्यामा जी हैं, साथ में हैं नंदिनी ओकलू, वीना राम फोला, जितनी उनकी सहेलियां हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बहुत ही अच्छा गाना है, खूबसूरत गाना है, जगमोहन जी की आवाज़ में, ये माना कि तुमसे न मिल पाएंगे हम। तो इस गाने को आप उनका आनंद लीजिएगा, और जितने लोग हमारे बीच नहीं हैं उनको श्रद्धांजलि।

जहाँ महबूब या महबूबा का नाम लिखकर हाथों में देखते थे, चूमते थे और छुप छुप के आंखें चार करते थे। और ऐसा वो ज़माना याद है ना आपको, एक फूल लेते थे, इसमें जो पंखुड़ियाँ होती थी उसको तोड़ कर कहते थे प्यार है या नहीं है, लव मी लव मी नॉट। वो क्या ज़माना था, और लोग इतने इनोसेंट थे ना, और प्यार भी इतना भी इनोसेंट ही था, और न कोई जैसे न ही बुकरीजी, न ही कोई बुरा जैसे बुरा बर्ताव, न ही छेड़खानी, बस प्यार तो प्यार होता था। काश वो दिन फिर से लौट आए, मगर पता नहीं दिन लौट कर आएंगे या नहीं, मगर जो गाने थे उस ज़माने के, ऑफ कोर्स वे लौट कर आ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सुनाने वाले हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, अपने ज़माने में कितना फेमस हुआ करता था और आज भी, और इसी गाने को बार बार रीमेक किया गया, रिमिक्स किया गया, और ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है, किशोरदा की आवाज़ में। फिल्म है प्यार का मौसम, और ये खास तौर पर स्वीट स्वीट सी शोभा ऑफ लालमाची वाली शोभा जी, ये आपके लिए और सभी दोस्तों के लिए जो किशोरदा के फ़ैन हैं, और आपका संदेह खुशहाल हो इसी कामना के साथ ये गाना सुनते हैं।

0: RM3 Radio.
1: जहाँ बन जाइए इस दिल का मेहमान, और मेहमान तो हैं हम, हैं आपके घरों में, आपके रेडियो द्वारा हमारी आवाज़ आती है, आप वेलकम करती हैं हमें, आप हमारा स्वागत करते हैं दिल से, प्यार से। थैंक यू सो मच और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से जुड़ने के लिए। तो बस थोड़ी देर में आप समाचार सुन पाएंगे, और अभी आपने ये जो गाना सुना फिल्म सिलसिले से लिया गया, और खूबसूरत आवाज़ कुनल गंजवाला की, और साथ में थी अलका याग्निक, और ये इसकी मांग की थी सजीद जी ऑफ रोज हिल। और जितने हमारे दोस्त अब फरमाइश करना चाहते हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, सो बस आपको बता दें कि अब से 90s वाले स्वीट स्वीट से गाने, 90s के ऊपर से के गाने हम चलाने वाले हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका हम पुराना गाना सदाबहार गाना नहीं सुना पाए, आपने नहीं सुना, समय नहीं मिला, तो बस अगले सप्ताह फिर से मिलने वाले हैं ना। तो हमारा सेगमेंट है 12 बजे से 2 बजे तक हम कुछ पुराने गाने 60s 70s 80s और एक दो अलग से गाने चलाते हैं, मगर 2 बजे के बाद 90s वाले गाने। सो आप किसी गाने की मांग कर सकते हैं, या फिर जो हमारे प्लेलिस्ट में है गाने, आप डेडिकेशंस कर सकते हैं। सो बस मिलते हैं समाचार के बाद।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। जनवरी में पेनल्टी पॉइंट सिस्टम दोबारा लागू होने के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में अप्रैल महीने के दौरान कम से कम 25% की कमी दर्ज की गई है। सरकार अब सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कानूनी प्रावधानों को सख्त करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित उपायों में इलेक्ट्रिक साइकिलों के लिए नए नियम शामिल हैं, जैसे आयु सीमा, हेलमेट पहनना अनिवार्य करना और बीमा इंश्योरेंस की आवश्यकता। कल नैरोबी में अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन शुरू होगा। अफ्रीका फॉरवर्ड के तहत लगाए जाने वाले इस सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 30 राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे। इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल होंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से नवाचार, सतत विकास, ऊर्जा परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों और फ्रांस के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉरिशस के नेशनल कैंसर सेंटर और

0: डॉक्टर जीतू अस्पताल में कैंसर की लगभग 10 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह ऑपरेशन भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर सरावना राजा मानिकम और डॉक्टर डिप्टी मिश्रा के एक सप्ताह के मिशन के तहत किए गए। दोनों विशेषज्ञ 11 मई तक देश में मौजूद रहेंगे। विदेश में ब्रिटेन में कैथरीन वेस्ट ने कैबिनेट मंत्रियों से केयर स्टार्मर के नेतृत्व को चुनौती देने की अपील की है। उनका दावा है कि अब तक 10 सांसद उनका समर्थन करने को तैयार हैं। उनका ये बयान यूनाइटेड किंगडम में गुरुवार को हुए स्थानीय चुनावों के बाद आया, जहां लेबर पार्टी को इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 14 और 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन कंपनियों पर ईरान को सैन्य सहायता देने का आरोप लगाया गया है। ये तीनों चीनी कंपनियां उपग्रह तकनीक में विशेषज्ञ हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार इन कंपनियों ने अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें ईरान को उपलब्ध कराई और इन सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल कर तेहरान ने अमेरिकी बलों को निशाना बनाने के लिए किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। इलुट कांजाबल में 52 साल की 92-year-old श्रीमती कासिया जिन्हें लोग लीलो से जानते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है कल दिन के 11 बजे इनके बेटे आनन्द शिवदिन के मकान इलुट कांजाबल से उठाकर दाह संस्कार के लिए कांजाबल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।

जो वेलकम बैक, दो बजकर 10 मिनट हुए हैं, रविवार है 10 मई 2026। तो सुहाना सफर प्रोग्राम के इस तीसरे घंटे में वेलकम है, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सो देविना है माइक पर और आपका साथ हम देंगे 3 बजे तक। देखते देखते 3 घंटे जो हैं जल्दी जल्दी से बीत रहा है, और संगीत वो एहसास है दोस्तों, संगीत वो एहसास है जो बिना बोले सब कह देता है ना। और पुराने गीत जो है हमेशा दिल के करीब रह जाते हैं। अगर 90s का ज़माना देखें तो इतना भी वो ओल्ड नहीं हुआ, मगर फिर भी पुराना ही है। जो आजकल की जनरेशन है, 2000 के जनरेशन है, उनके लिए तो 90s तो पुराना है ही, मगर पुराना का जैसे कहते हैं ना, पुराना वाइन, ओल्ड वाइन जो है हमेशा बढ़िया होता है। सो ये गाने भी। तो चलिए दोस्तों, अब मूड थोड़ा बनाते हैं, रविवार की दोपहर में थोड़ा गुनगुनाते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, थोड़ा प्यार जताते हैं, थोड़ा प्यार निभाते हैं और थोड़ा प्यार बांटते हैं। सो क्या शानदार शाम है, शाम होने वाली है, और ऐसे में ना बहुतों को नींद आती है इस समय। 2 बजे लंच खा लिया, अब थोड़ा आराम किया जाए, मगर आराम करना ही है तो म्यूज़िक के साथ कीजिए ना, हमें सुनते सुनते आप आराम कीजिए, सोइए मत, क्योंकि सोने के लिए तो ज़िंदगी बाकी है मेरे दोस्त, मगर अच्छे अच्छे मोमेंट का आप लुफ्फ उठाइए, क्योंकि पता नहीं कब ये ऐसा मौका मिलेगा। तो बस ये गाना, अगला गाना जो है आँखें बंद करके जो देखते हैं तो क्या होता है। सो ये मैसेज भेजते हैं, नमस्कार देविना जी, नमस्कार आपको भी, एक छोटा सा पोएम है। अच्छा दिल और अच्छी सोच सबके पास नहीं होती है, जिसके पास होती है वो दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं, वाह वाह। सो ये है फ्रॉम अनिता मोदालबेयर टू और लालजी और हीट टू परिवार, और वे सुनना चाहती हैं एतराज मूवी का गाना। सिंगर हैं उदित नारायण साहब, कयाग्निक आंखें बंद करके। सो जिनको ये गाना पसंद है उनके लिए हम चलाने वाले हैं। साथ में यहाँ पर है सोहन परिवार, रिस्पॉन्स त्रिभिषे के शिवम जी हैं, साथ में उसकी मिसिज हैं रेणुका, और उनकी बेटी हैं अनुभव और रचना। तो सोहन जी, अगली बार हम आपका गाना चला देंगे, फिलहाल इस गाने का आप मजा लीजिए।

2:25। प्रोग्राम है सुहाना सफर और आप हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके कॉल्स आ रहे हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, तो बढ़ते हैं एक अगले मैसेज की ओर। नमस्ते जी, विश्वानी डुमन वाकवा से। हेलो जी, अभी मैं बढ़िया गीत सुन रही हूँ। ऑफ कोर्स एकदम बढ़िया प्रोग्राम है आपकी दुआ से। और ये गीत है फिल्म आंदोलन से लिया गया और ये गाना खास तौर पर बहन इंदिरा शारदा, साथ में सहेली है नीला प्रतिभा शुभा और खास तौर पर गीता गजाधर के लिए। और जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं ना, आप मैसेजेस नहीं करना चाहते, बस ऐसे ही प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, हमें कॉल नहीं कर सकते मगर फिर भी हमें सुन रहे हैं, तो लॉट्स ऑफ लव टू यू, बहुत सारा प्यार आप सबों के लिए। आंदोलन मूवी का गाना विश्वानी जी आपके लिए।

जहाँ दिल की बातें बंद होतों की बातें हर कोई समझ नहीं पाता मेरे दोस्त, अगर कहना है तो उनसे कहो जो आपको समझे, आपके जज्बातों को की कदर करे, आपको समझे और आपके साथ रहे। वक्त है उन खूबसूरत 90s के गाने की, उस खूबसूरत दौर में जब प्यार चिट्ठियों में होता था, चिट्ठी लिखते थे, खत भेजते थे और गाने दिल की भाषा बन जाते थे, है ना। वैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली मोहब्बत की तरह हमेशा याद रहते हैं। जब कॉलेज के दिन में किसी से आंख लग जाती थी और सालों बाद जब उनसे मुलाकात होती है, तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ क्या हुआ था, मैं उस समय किससे दिल लगा बैठे थे। मगर प्यार पर कोई कैसे कहते हैं ना, उस पर सीमा नहीं होती हमारा कोई, जैसे हम उस पर काबू नहीं रख पाते। प्यार तो प्यार है मेरे दोस्त, तो इसे कहते हैं ना प्यार कोई खेल नहीं। कुमार सानू साहब की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग और इसकी मांग ये है शोभा जी अवलान माची, और वे कह रही हैं ये गाना स्पेशली फॉर ऑल द लवर्स। शोभा जी आपके लिए।

शानदार समा है, रोमांटिक मूड बन गया है और साथ में आप लोग हमारे साथ निकल पड़े हैं 90s के उस सफ़र में जब प्यार होता था, दिल धक धक करता था और जज्बात को बयान करने के लिए हम हमारे पास शब्द नहीं थे तो हम गानों का इस्तेमाल कर लिया करते थे और साथ में उस उन जज्बातों को पन्ने पर लिखते थे, चिट्ठी भेजते थे, दोस्तों से कहते थे अरे उससे मेरी चिट्ठी दे दो ना उस लड़की को या उस लड़के को। और याद है ना उस समय चॉकलेट भी मिलता था लड़कियों, हाँ चॉकलेट मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे और पता कभी कभी पता नहीं चलता था कि अरे वाह कौन हमें चॉकलेट भेज रहा है। बस वो था मैजिक 90s का, है ना। तो उसी 90s का के दौर से कुछ निकल कर 2000 में आ जाते हैं जहाँ पर इमरान हाशमी साहब जो थे वे अपना रंग जमा रहे थे और अपने जो एक्टिंग से और उनकी जो फिल्मों के सभी गाने वाह लाजवाब थे ना। तो केके की आवाज़ में फिल्म जन्नत से लिया गया रोमांटिक गाना है और ये गाना खास तौर पर हरीश बाबू के लिए अब्बास है।

0: RM3 Radio.
1: शेयर खुशल की आवाज में, प्यार सी आवाज में ये होगा अगला गाना और ये जाएगा especially to all the lovers. सुदेवी जी, राज वाला गाना हम नहीं चला पाएंगे, ये गाना इसमें आपका नाम जोड़ देते हैं साथ में आपके पति जी के लिए, सभी बच्चों के लिए.

2:55 और 3 बजने वाले हैं, हमारे बाद आएंगे आज प्रताप सिंह लेकर ऐसा भी होता है प्रोग्राम। देखते देखते सुहाना सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका, अब यादें अभी भी दिल में मुस्कुरा रही हैं। अगर आप ऐसे यादगार गाने सुनने के शौकीन हैं तो बस और फ्री रेडियो मनोरंजन से जुड़िए। बहुत से गाने, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए रखे गए हैं और आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ में आपकी यादें भी ताज़ी हो जाएंगी। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का अच्छी संगीत खुश रहने में है। सो हाँ दोस्तों, अब हम लेते हैं इजाज़त। इससे पहले हम ये अंतिम मैसेज पढ़ते हैं। नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। After several weeks of absence due to muscular pain, today I'm making my request, of course. So will you please play the song? Ji haan, from the movie Ek Ladka Ek Ladki. Ye hai from Gyan Bihari Ji. Hope aap ab behtar hain, aap behtar feel kar rahe hain. To Gyan Bihari Ji ke liye wife Sabita, sister-in-law Geeta, Sanjeev aur unke jo friend hai Sunil, Rani aur sabhi RM-free listeners ke liye. Thank you so much. So aapke saath yah surila safar सच में बेहद खास रहा। अगले रविवार फिर मिलेंगे नए गीतों के साथ, नई यादों के साथ और ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। ये प्यारा सा गाना आप सबों के लिए, और अगर आपको आप सुनेंगे शाम को 6:30 हम फिर से वापस आएंगे। हाँ जी, फिर से वापस आएंगे आज की शाम 6:30 नई सोच प्रोग्राम लेकर, और इसके बाद 7 से 9 तक दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के अंतर्गत 80s 90s के गाने आप मांग सकते हैं। हमारे पास प्लेलिस्ट भरी है, आप डेडिकेशंस कर सकेंगे। तो फिर से होगी मुलाकात आज की शाम, तब तक के लिए ये गाना और ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।

0: वालों के लिए नए नियम शामिल हैं। आज सुबह काठोबो नगर पालिका में वॉइस ऑफ हिंदू के प्रतिनिधियों के एक जुटाव के दौरान संगठन के कार्यकारी सदस्यों को फिर से नियुक्त किया गया। संगठन के संचालकों ने भावी बजट तैयारियों को लेकर अपने विचार रखे। वॉइस ऑफ हिंदू ने विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों और मेसन के लिए वृद्धावस्था पेंशन पर फिर से गौर करने की मांग की। विदेशी स्तर पर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख थिरु विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। विजय ने एक्स पर कहा, मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता का कल्याण और प्रगति है। तमिलनाडु के निरंतर विकास के लिए हम केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग की आशा रखते हैं। 14 और 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन कंपनियों पर ईरान को सैन्य सहायता देने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। अबिलक्सटो रॉयल रोड फ्लोरियाल में 85 साल की 85-year-old श्रीमती फुलेश्री अबिलक पैदाइश नाम विशेषर जिन्हें मैडम अबिलक से जाना जाता था की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान अबिलक्सटो रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेथ 4 PM। एपास दे शाजाल वाकवा में 23 साल की 23-year-old श्री वैभव रणवीर टेंगर जो रणवीर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 5 बजे इनके पिता श्री विकास टेंगर के मकान एपास दे शाजाल वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 5 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Plug and play.
2: Continuous music. RM3.
3: ऐसा भी होता है ऑन RM3।

इस दुनिया में जो आता है उसे एक न एक दिन यहां से जाना पड़ता है। इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। विधि का यही विधान है। No one is eternal. We are all mortals. जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से कोई नहीं बच पाया है। मनुष्य जीवन सीमित है। 100 वर्ष की आयु तक इंसान जी सकता है, उसके बाद नो वे। इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई या कोई जड़ी बूटी नहीं है जो इंसान को अमर कर सकता है। एक न एक दिन सभी को इस संसार को छोड़कर जाना है। फिर इतना मोह माया, इतना घमंड, इतनी गुरूर क्यों? क्यों लोग एक दूसरे से जलते हैं? क्यों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की खुशी देखी नहीं जाती? क्यों लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान ले सकते हैं? कैसी दुनिया है ये? ऐसा भी होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त अजय प्रताप सिंह से तालुका प्यार भरा नमस्कार। ये है और एमफ्री रेडियो मनोरंजन, एमबीसी रेडियो। शाम के 3:06 अभी से लेकर 4 बजे तक अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम।

होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त अजय प्रताप सिंह से तालु का प्यार भरा नमस्कार। ये है और इम्प्री रेडियो मनोरंजन एमबीसी रेडियो। शाम के 3:06 अभी से लेकर 4 बजे तक अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है। जी हाँ,

ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि शादी के बाद नोक झोक होती रहती है पति पत्नी के बीच में। पति कुछ कहता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी कुछ कहती है तो पति नाराज हो जाते हैं। पर इतनी भी क्या नाराजगी कि कभी कभी कोई पति अपनी पत्नी की जान ले सकता है या कि किसी पत्नी अपने पति का पति की जान ले सकती है। ऐसा हुआ है कुछ दिन पहले भारत में, जी हाँ, नई दिल्ली में अमर कुमार शर्मा नाम का एक जज, जी हाँ ही वॉज ए जज, वो काम करता था और उसकी मृत्यु हुई क्योंकि उसकी पत्नी उसे हरास कर रही थी। कई दिनों से बार बार पे वो उसकी पत्नी ताना देती थी कि तुम केवल माँ की बात सुनते हो, पत्नी की बातें सुनते हो, माँ के आंचल से बंधे हुए हो, माँ का बेटा हो, ऐसे है तो माँ के साथ हो, मेरे संग क्यों रहते हो। सुनते सुनते सुनते सुनते अमन कुमार शर्मा के कान पक गए और कुछ दिन पहले उसने अपने घर के पंखे में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर दी। ओ माय गॉड, पुलिस का रिपोर्ट ये भी कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद कि उसकी पत्नी उसे बहुत हरास करती थी, बात बात पर उसे उस पर चिल्लाती थी, कहती थी कि वो शादीशुदा व्यक्ति होते हुए माँ की बात सुनता है, पत्नी की बात नहीं। सो बेचारा जो कि जज था, जी हाँ अमन कुमार शर्मा, उन्होंने जब देखा कि वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अपनी पत्नी की बातों को नहीं सुन पा रहे थे, उसने आत्महत्या कर दी। ज़रा सोचिए उस व्यक्ति की माँ पर क्या क्या गुजरा होगा जब उसने सुना कि उसका बेटा, उसके बेटे ने आत्महत्या कर दी। अब उस पत्नी का क्या होगा, उसी के कारण आज उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी। क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए था, बार बार पर ताना देना चाहिए था कि आप माँ की बात सुनते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ नहीं जी पा रहे थे, आप उन्हें तलाक दे सकते थे। ये नहीं कि बार बार पर आप ताना देते। हमने देखा है कि कई घरों में ऐसा होता है कि पत्नियाँ जो होती है, सब ऐसी नहीं है, कुछ पत्नियाँ ऐसे बार बार पर पति को ताना देती है, हाँ तुम केवल माँ की बात सुनते हो, माँ की बात सुनते हो। पति बेचारा करे तो क्या करे, अब पत्नी क्या करेगी, जाएगी जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि उस व्यक्ति ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें लिखा था कि वो सुसाइड कर रहे अपने पत्नी के कारण क्योंकि पत्नी उसे हरास कर रही थी। माय गुडनेस, एक पत्नी के कारण एक पति की जान चली गई। दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

बाप बेटे का रिश्ता बड़ा ही प्यारा और अनोखा रिश्ता होता है। और जब हम बाप बेटे के बारे में बात करें तो दशरथ राजा भी एक पिता थे और राम जी से कितना प्यार करते थे, हैं कि नहीं। पर हाल ही में सुनने में आया कि 24 दिसंबर साल 2024 में 24 दिसंबर 2024 को मिसूरी में एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। पिता का नाम था हैरोल्ड लेस्टर, 61 ईयर्स के थे, और बेटा जो था उसका नाम था केविन एंड ही वाज 26 ईयर्स। पिता ने बेटे को इसलिए जान से मार डाला बिकॉज ही गॉट एविडेंस कि उसका बेटा अपने माँ के साथ नाजायज रिश्ता रखता था। माय गुडनेस। और एक दिन बाप ने बेटे को अपनी माँ के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया उनके घर के अंदर ही। और फिर क्या था, हैरोल्ड लेस्टर आग बगुला हो गया। उसने ड्रॉवर से अपनी गन निकाला और अपने बेटे को छली छली कर दिया। बेटा वहीं पर मर गया। सो क्या ऐसा हो सकता है, जैसा हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं मोर डिटेल्स तो टाइप कीजिए यूट्यूब पर हैरोल्ड लेस्टर, हाउ डिड ही किल हिज सन, हैरोल्ड HAROLD लेस्टर LUSTER। इस व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपने बेटे की हत्या कर दी क्योंकि उसे एविडेंस मिला कि उसका बेटा उसके माँ के साथ नाजायज रिश्ता रखता था। एक बात सोचने वाली है, बेटे को तो उसने सजा दी पर पत्नी को सजा नहीं दी, क्योंकि इसमें बेटा और उसकी पत्नी दोनों सेम भागीदार थे, तो फिर क्यों केवल बेटे को सजा मिली माँ को सजा नहीं मिली। सो ऐसा होता है, एक माँ और बेटे का रिश्ता पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पर यहाँ पर ये लोग नाजायज रिश्ते रख रहे थे, इसीलिए हैरोल्ड लेस्टर ने गुस्से में आकर बेटे को जान ही से मार डाला। इसलिए कहते हैं कि कुछ कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। उस बेटे को सोचना चाहिए था कि ये उसकी माँ है, और उस औरत को सोचना चाहिए था कि ये उसके पति का बेटा है। क्या बेटे के साथ ऐसा रिश्ता रखा जा सकता है? छी, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गुणों के लिए वो गिनेस वर्ल्ड बुक में उनका नाम रिकॉर्ड है। क्या बात है, क्या बात है। उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है जिसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका नाम है राम सिंह चौहान। राम सिंह चौहान अपने बेहद लंबी मूंछों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी मूंछों ने उन्हें विश्व रिकॉर्ड दिलाया। उनकी मूंछों की लंबाई लगभग 14 फीट करीब 3.3 मीटर है से भी अधिक मापी गई है, जिसके कारण उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उनकी मूंछों की खास बात है, वे कई दशकों से अपनी मूंछें बढ़ा रहे हैं। मूंछों की देखभाल में रोज़ काफ़ी समय लगाते हैं, तेल, कंघी और विशेष देखभाल का उपयोग करते हैं। मूंछों को संभालने में कभी कभी 2 लोगों की मदद भी लेनी पड़ती है। राजस्थान में बड़ी मूंछें शान, सम्मान और परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। राम सिंह चौहान की मूंछें केवल रिकॉर्ड नहीं बल्कि राजस्थानी संस्कृति की पहचान भी मानी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। सो राम सिंह चौहान जी, बधाई हो, बधाई। आपकी मूंछें आपको स्टार बना दिया। अगर आप में से भी बहुत लोग हैं जो पुरुष लोग अभी हमें सुन रही है, जेंट्स लोग, तो अगर आप भी मूंछें रखना चाहते हैं, गिनेस वर्ल्ड बुक में जाना चाहते हैं, तो मूंछों को लंबा रखिएगा। क्या बात है। ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है। और इस व्यक्ति ने काफ़ी मेहनत की, बड़े नाजों से अपने मूंछों को पाला, उसे संवारा, उसे कंघी की, और आज उसका नाम गिनेस वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है। वर्ल्ड दुनिया में ऐसा भी होता है। अनबिलीवेबल बट ट्रू।

दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनसे हमें बहुत डर लगता है। हम उन्हें देखते तो है पर छूना नहीं चाहते, कहीं वो हमें खा ना जाए। उन जीव जंतुओं में से एक है मगरमच्छ, जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं। सो क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े क्रोकोडाइल का नाम क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़े क्रोकोडाइल का नाम है लोलोंग। यह एक विशाल खारे पानी का मगरमच्छ है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो फिलीपींस में पाया जाता है। लोलोंग की लंबाई लगभग 20 फीट 3 इंच है, यानी कि 6.17 मीटर्स। उसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम से अधिक है और उसका प्रजाति है खारे पानी के मगरमच्छ। और लोलोंग को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मगरमच्छ है। इतना बड़ा है कि बाप रे बाप। और खारे पानी के मगरमच्छ दुनिया के सबसे बड़े जीवित प्राणियों में से माने जाते हैं। ये केवल फिलीपींस में नहीं, पर और सारी जगहों में हैं जहां पर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। और वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रागैतिहासिक काल में सर्कोसुचुस जैसे विशाल मगरमच्छ मौजूद थे। जहाँ सर्कोसुचुस एक मगरमच्छ का नाम था, बहुत साल पहले की बात है। उनकी लंबाई 35 से 40 फीट 35 से 40 फीट तक हो सकती थी और उन्हें कभी कभी सुपर क्रॉक भी कहा जाता है। बाप रे बाप, हम जब क्रोकोडाइल पार्क जाते हैं, क्रोकोडाइल को देखते हैं तो सोचते भाई ये क्रोकोडाइल हमें देख रहा है। पर कुछ देशों में ऐसा कहा गया है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्रोकोडाइल को अपना पेट की तरह पालते हैं, पालतू जानवर की तरह पालते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। क्या क्रोकोडाइल से दोस्ती की जा सकती है? भाई मैं तो दोस्ती नहीं करूँगा। मैं एक पक्षी से, बकरी से दोस्ती कर लूँ, पर क्रोकोडाइल से कभी नहीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल इंसान को खा जाता है। न्याम न्याम, क्या बात है। सोचने वाली बात है, इंसान मछली खाता है और क्रोकोडाइल इंसान को खा जाता है।

जब हम जानवर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो अपनी गति यानी कि स्पीड और बुद्धिमानी यानी कि इंटेलिजेंस के लिए प्रसिद्ध है और कुछ जमीन पर सबसे तेज है तो कुछ समस्या सुलझाने और सीखने की क्षमता का अद्भुत माने जाते हैं। सबसे तेज जानवर के नाम इस दुनिया में है पेरेग्रीन फाल्कन। दुनिया का सबसे तेज जीव माना जाता है। शिकार करते समय उसकी गति 300 किमी घंटा में भी अधिक हो सकती है। हवा में गोता लगाकर हमला करता है। दूसरे स्थान पे है तेज चलने वाला जानवर चीता। जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर लगभग 100 से 120 घंटा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दौड़ता है। उसकी तेजी छोटी दूरी के लिए होती है। तीसरे स्थान पे है सेलफिश। समुद्र की सबसे तेज मछलियों में से गिना जाता है। लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। चौथे स्थान पे है प्रोंगोन। लंबी दूरी तक तेज दौड़ने वाला माहिर लगातार तेज गति बनाए रख सकता है। फिर सबसे बुद्धिमान जानवर है चिंपांजी। इंसानों के सबसे करीब जीवों में से एक। औजार बना सकता है, समस्याएं हल कर सकता है, इशारों और प्रतीकों को समझने की क्षमता रखता है। और एक बुद्धिमान जानवर है और वो है डॉल्फिन, जिसे हम डॉल्फिन कहते हैं। बहुत सामाजिक और समझदार क्रिएचर है ये। तलपन में खुद को पहचान सकता है। जटिल

ध्वनियों से संवाद करता है और एक इंटेलिजेंट जानवर है वो है हाथी। हाथी मेरे साथी शानदार याददाश्त के लिए प्रसिद्ध है। हाथी भावनाएं और सामाजिक संबंध गहराइयों से समझता है और मृत साथियों के प्रति शोक जैसा व्यवहार करता है। और हाथी जब उदास होता है तो उसके आंखों से आंसू भी बहते हैं, यानी कि उसमें फीलिंग करने की जो फीचर है उसमें वो फील कर सकता है। फिर है क्रो। पक्षियों में अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है कौवा। औजारों का उपयोग कर सकता है, चेहरे पहचानने और सीखने की क्षमता रखता है। फिर है और एक क्रिएचर ऑक्टोपस जिसे हम ओगिट कहते हैं। पहेलियों सुलझाने और रास्ते याद रखने में सक्षम है। रंग और आकार बदलकर खुद को छिपा देता है। रोचक तत्व ये है कि तेज होने का मतलब हमेशा बुद्धिमान नहीं होता। कई धीमे जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। प्रकृति में हर जानवर की अपनी विशेष क्षमता होती है। कोई गति में श्रेष्ठ है, कोई समृद्धि में, तो कोई सामाजिक व्यवहार में। क्या बात है, आपने सोचा था कि केवल इंसान बुद्धिमान और तेज है? अरे भाई, जानवर भी कुछ कम नहीं है। हे आपको बता दें कि ऐसा भी होता है, कार्यक्रम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक हमारी आपकी मुलाकात होगी रेडियो मॉरिशस पर, हमारा प्रोग्राम है। और उसके बाद होगा तो हर पसंद। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू एमबीसी रेडियो।

शाम के तीन बज के पचास मिनट हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सुने प्रोग्राम ऐसा भी होता है और जय प्रताप सिंह सेतालू के साथ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग बर्थडे केक आपको बहुत पसंद है कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा जन्मदिन केक कहाँ पर है? जी हाँ, सबसे प्रसिद्ध रिकॉर्डों में से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाया गया था एक बहुत ही विशाल केक जिसका वजन हजारों किलोग्राम में था। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड समय समय पर बदलता रहता है क्योंकि अलग अलग देशों में नए रिकॉर्ड आते जाते रहते हैं, पर प्रसिद्ध रिकॉर्ड ये है। वजन लगभग 58,000 किलोग्राम से अधिक, आकार कई मंजिलों का केक, इसे बनाने में रिकॉर्ड टूट गए। विशेष बात यह है कि इस केक में, इस मिठाई में आटा टन से इस्तेमाल किया गया। चीनी, आटा, क्रीम, बड़े औद्योगिक औजन, सैकड़ों लोगों की टीम कई दिनों तक इस केक को तैयार कर रहे थे। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हर बड़े रिकॉर्ड को माप कर सुरक्षा नियमों के अनुसार प्रमाणित करता है। ऐसे विशाल केक अक्सर किसी शहर, त्यौहार या विशेष समारोह के लिए बनता है और ये अमीर लोगों के यहाँ बनता है। ज़रा सोचिए, आप एक दिन आपका जन्मदिन है, आप उठते हैं और आपके सामने इस दुनिया का सबसे बड़ा बर्थडे केक आ जाए तो आप उसे महीने तो क्या साल तक खा सकते हैं पर जिन्हें मधुमेह है वो तो नहीं खा पाएंगे, छोटा सा खा पाएंगे। चलिए अभी के लिए सुनते हैं माय अडोरेबल डार्लिंग, बहुत ही प्यारा सा गीत है, क्या बात है। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

लेडीज एंड जेंटलमैन डियर ऑडियंस, इश्क खुदाई बहुत ही जोशीला गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ठीक 4 बजे ऐसा भी होता है कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद होगा फ्लैश न्यूज और फिर डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी गजलें, उनका साथ दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है 4 बजे रेडियो मॉरिशस पर हमारा प्रोग्राम, उसके बाद 5 से 6 बजे होगा तो हर पसंद। सो मिलते हैं कुछ ही मिनटों में रेडियो मॉरिशस पर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और जी प्रताप सिंह की ओर से नमस्कार।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
3: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। जब से पेनाल्टी पूंछ सिस्टम वाली प्रणाली शुरू हुई है तब से आंकड़ों के अनुसार दर्ज किए गए कुल 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से मंत्रिपरिषद ने पेनाल्टी पूंछ सिस्टम के तहत सजा को और सख्त करने की मंजूरी दे दी है। मंत्री उस्मान मोहम्मद ने बताया कि इस साल जनवरी में सिस्टम लागू होने के बाद से सुरक्षा के हालात सामान्य रूप से स्थिर रहे हैं। इसके बावजूद इस विशेष उल्लंघन के लिए पेनाल्टी पूंछ को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और केन्या की राजधानी में अंतिम चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बड़े अफ्रीका फ्रांस सम्मेलन के लिए राजनीतिक नेताओं, निवेशकों, आर्थिक नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का इंतजार किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस चर्चा के मुख्य विषय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, तकनीक, युवाओं का रोजगार और अफ्रीकी महाद्वीप की संप्रभुता से जुड़े मुद्दे होंगे। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बीच ये सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप के भीतर आपसी संबंधों को और मजबूत करने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। शुक्रवार दोपहर को एंजन लिमिटेड कंपनी की एक पाइपलाइन से भारी तेल का रिसाव हो गया, जो मरम्मत के लिए सप्लाई के दौरान एक नाले में जा गिरा और बंदरगाह के क्षेत्र तक पहुंच गया। इसके बाद इंजन द्वारा नियुक्त की गई कंपनी पॉलीग्रीन ने रविवार सुबह से सफाई का काम शुरू कर दिया है। ये काम अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों को समर्थन देने के लिए इराक के रेगिस्तानी इलाके में एक गुप्त सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया है। इस बात का दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया है। इसके अनुसार जब इराकी सुरक्षा बल इस ठिकाने के करीब पहुंचने थे तब इसराइल ने उन पर हवाई हमले भी शुरू किए थे। ये गुप्त अड्डा ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले बनाया गया था और इनकी जानकारी अमेरिका के को पहले दे

दिया गया था दे दी गई थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान में कई ठिकानों पर संयुक्त हमले किए थे, जिसके बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया। तो ये थे अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार। Impasse de Chazal Vacua में 23 साल के 23 years old की श्री वैभव रणवीर टेंगो जिन्हें सब लोग रणवीर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के पाँच बजे उनके पिताजी श्री विकास टेंगो के घर एम्पास दे शाजाल वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन दिस आफ्टरनून एट 5 जोली स्ट्रीट 4 में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुविना दोवारा का प्रसाद पैदाशी नाम मंगर मंगुत्रोय और जिन्हें सब लोग सुविना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर जोली कैथ्रोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए देफ्रोया किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। शाम की ये घड़ी शायद इसलिए खूबसूरत लगती है क्योंकि दिन भर की भागदौड़ के बाद दिल थोड़ा सच बोलना चाहता है। कुछ बातें जो किसी से कही नहीं जाती वो गजल बनकर हमारे सामने होती है। कुछ दर्द जो आंखों तक नहीं आते वो आवाज़ में उतर जाते हैं। मैं हूँ आपके साथ पूनम और अगले एक घंटे तक बस हम एहसासों की बात करेंगे फिल्मी गज़लों के साथ और फिल्मी गज़लों के प्रोग्राम में आप सबके साथ। आप इंजॉय कीजिए आपका ये फिल्मी गज़लों का प्रोग्राम।
1: RM3 रेडियो।

0: 4:15 हो रहे हैं। कहते हैं कि कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं पर उनकी आदत नहीं जाती, कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं पर उनकी आदत नहीं जाती। आज भी कभी कभी दिल बिना वजह उन्हीं की तरफ लौट जाता है। राहत इंदौरी साहब ने लिखा है, इतना सुंदर। वो एक ऐसे शायर थे, जब लिखते थे तो कहते हैं कि दिल निचोड़ के रख देते थे। और सच ही तो है, कुछ रिश्ते ख़त्म तो हो जाते हैं पर उनका एहसास नहीं जाता। शायद इसलिए कुछ गज़लें सुनते ही दिल अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई पुरानी याद आज भी छुप के बैठी होती है और कह रही होती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, क्या तुम्हें आज भी मेरा एहसास है। तो ये गाना, एक प्यारा सा जो गज़ल है, ये तलत अज़ीज़ साहब की है। आपको अच्छा लगेगा, सुनिए प्लीज़।
1: RM3 Radio.

0: गजल।
1: आप सुन रहे हैं फिल्मी गजलें और ये ऐसा एक प्रोग्राम है जहां पर आप दिल की हर बात कहते हैं। गुलजार साहब लिखते हैं, कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंख में हमको भी इंतजार दिखे। गुलजार साहब की बातें हमेशा दिल के बहुत ही करीब लगती हैं क्योंकि वो ऐसे शायर हैं जो सबसे ज़्यादा अनोखा लिखा, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। कहते हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई हमें भी उसी तरह महसूस करे जैसे हम उसे करते हैं, और शायद इसी इंतज़ार का नाम है मोहब्बत, और मोहब्बत जब होती है तो इंतज़ार बनता है।
0: RM3 Radio.

0: जॉनी लिया साहब लिखते हैं, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। जॉनी लिया साहब की शायरी सीधे दिल से उस हिस्से में उतरती है जहां इंसान अपनी तन्हाई छुपा कर रखता है, और कई लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, और शायद इसलिए ये बात दिल अचानक चुप होकर सुनता है और सिर्फ इतना कहता है कि क्या मैं तेरे पास हूँ, क्या तू मुझे समझ सकता है, क्या मैं जिंदगी में तेरे साथ चल सकता हूँ। तो इंजॉय कीजिए आपकी ये गजल।
1: RM3 Radio.

0: एक बहुत प्यारी बात किसी ने कही, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिना चिट्ठी बिन तार। निदा फाजले लिखती हैं, हर उस इंसान को दिल को जो छू जाती है बात, जो अपनी माँ से दूर रहता है, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ की याद हमेशा दिल को बच्चा बना देती है। और आज जो लोग भी मदर्स डे मना रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बस यही दुआ है, हर किसी को माँ का प्यार मिले और हर माँ का दिल अपने बच्चे के लिए हमेशा उसके पास रहे।
1: RM3 Radio.

0: गजल।
1: साहिर लुधियानवी साहब लिखते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। साहिर साहब रिश्तों की सच्चाई बहुत आसानी से कह जाते थे, कभी कभी प्यार बच नहीं पाता था, लेकिन उनकी याद उम्र भर साथ रहती थी उनके साथ। और हमेशा कहते थे, जिसके पास मोहब्बत है ना उसके पास सब कुछ है, जिसके पास जिंदगी है उसके पास मोहब्बत है, और जिसके पास जिंदगी और मोहब्बत है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, और जिसके पास माँ है, जिसके पास बहनें हैं, जिसके पास कहते हैं जिंदगी की हर चीज़ होती है, तो बस उन चीज़ों को संभाल के रखिए जो आपके पास है। 4:46 हो चुके हैं, आप अपना फेवरेट प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, बस एंजॉय करते रहिए। ये है फिल्मी गजलें पूनम के साथ
0: RM3 रेडियो।

0: 4:51 हो चुके हैं दोस्तों। गजल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। उम्मीद है आज की इस महफिल ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया होगा। मैं थी आपके साथ पूनम, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मेरे बाद आएंगी शीतल जी अपने प्रोग्राम के साथ, उनका साथ देना मत भूलिएगा। और बस ये गाना एक प्यारा सा, जो कहते हैं इसे नज़्म कह लो, गज़ल कह लो या गाना कह लो, बात एक ही है, क्योंकि ये बस जो भी हो वो दिल तक जाना चाहिए। और दिल तक होता है तो समझ लो आपकी यादें और आपके एहसास जिंदा हो जाते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ पूनम।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. RM3 Radio.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक, शाम के 5 बज रहे हैं।
4: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
5: विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही महान कलाकार, एक बहुत ही जाने माने कलाकार रहे, जिनका नाम हिंदी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज हमारे बीच नहीं रहे, इनके अदाकारी से, इन पर फिल्माए गए गीतों से उन्हें हम आज भी याद करते हैं।

70 का दौर विनोद खन्ना का सबसे अहम दौर रहा, जहां वे सफलता के शिखर तक पहुंच चुके थे। एक ऐसा दौर जहां हर कोई विनोद खन्ना के दीवाने हो गए थे, उनके अदाकारी से, उनके पर्सनालिटी से। विनोद खन्ना के अनगिनत सुपरहिट फिल्मों में से एक अमर अकबर एंथनी, जो कि आज भी लोगों को बेहद ही प्रभावित करता है। मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म रही। विनोद खन्ना ने इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया और उनके बगल में द ग्रेट अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी,

ये खूबियां रही इन तीन महान कलाकारों का। एक जगह जब ये तीनों अमर अकबर एंटनी हो, फिल्म को सुपरहिट तो होना ही था। टाइटल सॉन्ग अमर अकबर एंटनी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह की जुबानी, जहां द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाने को लिखा आनंद बख्शी ने।

विनोद खन्ना पर आधारित यादें की इस दूसरी कड़ी में कुछ सदाबहार गाने 1977 में फिल्म आई थी आपके खातिर विनोद खन्ना और रेखा इस बतौर लीड एक्टर नजर आए पप्पी लहरी के खूबसूरत संगीत निर्देशन में एक मेमोरेबल हिट बंबई

1981 में ड्रामा बाय चेतन आनंद री इनकॉर्नेशन मूवी रही कुदरत। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना भी इस फिल्म में मौजूद रहे। ये गाना पिक्चराइज हुआ विनोद खन्ना और हेमा मालिनी पर, प्लेबैक दिए किशोर कुमार और अनिल पिंटो। म्यूजिक कंपोजिशन बाय द ग्रेट आर डी बर्मन।

बॉलीवुड हिस्ट्री में विनोद खन्ना का वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल करियर ब्रेक 1980 का दौर रहा। 1982 में अपने करियर के पीक पर थे। फिर मुकद्दर के सिकंदर के बाद कई हिट फिल्मों के बाद और यहां से एक नया दौर शुरू हुआ स्टारडम टू स्पिरिचुअलिटी विनोद खन्ना का। वो बन गए द फॉलोअर ऑफ ओशो। इस कम्युनिटी के साथ वे पहुंच गए अमेरिका। अपने स्पिरिचुअल जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दिया। अपने करियर को, अपने परिवार को, सबको पीछे छोड़ गए।

पांच साल बाद 1987 में आया वापसी का समय। वापसी के बाद भी उनका जादू कायम रहा। विनोद खन्ना ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा से जुड़ गए, एक के बाद एक फिल्मों में नजर आने लगे। हालांकि पहले जैसे स्टारडम उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जो कि वे एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर रहे, हर एक कैरेक्टर को बड़ी आसानी से प्रदर्शित करते गए। 1987 में इंसाफ बतौर लीड एक्टर नजर आए, अपने आप को री एस्टैब्लिश किया। उनके ऑपोजिट डिंपल कपाडिया रही। विनोद खन्ना एक ऐसे एक्टर रहे जो कि अपने दौर के हर एक कलाकार के साथ काम करते आए, हीरो हो या

फिर हीरोइन। 1987 के फिल्म सत्यमेव जयते, मीनाक्षी शेषाद्री, अनीता राज, रोमांटिक क्लासिक मूवी जिसके गीत और संगीत से लोग आज भी प्रभावित होते हैं।

विनोद खन्ना एक ऐसे सितारा रहे जिसने अपनी राह खुद चुनी और हमेशा की तरह प्यार करने वालों के दिलों पर छाते गए, प्यार के खूबसूरत फलसफे सिखाते गए। फिल्म आई थी 1977 में परवरिश। अमिताभ बच्चन, शमी कपूर और कई महान कलाकारों के बीच वे इस फिल्म में नजर आए और प्यार के खूबसूरत फलसफे सिखा गए। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाने को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

विनोद खन्ना का फिल्मी सफर अनोखा रहा। खलनायक से नायक, फिर उनकी स्पिरिचुअल जिंदगी जिसका प्रभाव उनके जिंदगी पर, उनके फिल्मी सफर पर पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते गए, हर एक कैरेक्टर में अपने आप को ढालते गए। 1988 में फिल्म आई थी दयावान। फिल्म दयावान में उन्होंने एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर का काम किया। इस फिल्म में उन्होंने कई कैरेक्टर निभाए, समाज से धक्के खाते हुए जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते गए। दिल टूटा गया लेकिन वो टूटे नहीं,

धक्के खाते हुए बन गए एक मजबूत इंसान, बन गए दयावान, गरीबों के लिए काम करता था, गरीबों का सुनता था, द कंपैशनेट, द दयावान, हर एक रंग में अपने आप को फिरो दिया, प्यार के रंग में। ये खासियत रही इस दयावान की, यानी कि विनोद खन्ना की। फिल्म दयावान के बाद विनोद खन्ना एक बार फिर नजर आए माधुरी दीक्षित के साथ। फिल्म थी महासंग्राम। कुछ मौसम बदले, कुछ एहसास बदले, उनके हर एक मुस्कान, हर नजर एक खूबसूरत कहानी सुना जाती थी। दुनिया वाले भी क्या याद करेंगे विनोद खन्ना के अजीबोगरीब फिल्मी और जिंदगी की कहानी। जो हो गया सो हो गया एक बेहद ही खूबसूरत गाना रहा, प्लेबैक दिया कुमार सानू और साधना सरगम ने। एक्शन मूवी जो कि आई थी 1990 में, फिल्म को प्रोड्यूस किया मुकेश भट्ट ने और डायरेक्ट किया महेश भट्ट ने। विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्री और संगीता बिजरानी बतौर लीड एक्टर नजर आए। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ विनोद खन्ना की खूबसूरत अदाकारी के साथ साथ इस फिल्म के गीत और संगीत आज भी लोगों को प्रभावित करता है।

नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि देश में पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से आंकड़े दर्शाते हैं कि दर्ज किए गए 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से संबंधित हैं। इसीलिए मंत्रिमंडल ने पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत ऐसे अपराधों के लिए सजा और सख्त करने की मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री उस्मान माओमेद के अनुसार ऐसे अपराध के लिए

0: पॉइंट 5 से बढ़ाकर 10 किए जा रहे हैं। समाचारों को बढ़ाते हैं। शुक्रवार को इंजन लिमिटेड की एक पाइपलाइन मरम्मत के लिए साफ की जा रही थी, जब उससे हैवी ऑयल का रिसाव हुआ। तेल नाले में बहकर बंदरगाह के क्षेत्र तक पहुंच गया। इंजन कंपनी ने समुंदर से तेल हटाने के लिए पॉलीग्रीन कंपनी की सेवाएं ली। आज सुबह शुरू हुआ यह सफाई अभियान आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। अनिशा मादाया की रिपोर्ट पर करुणा लालू ज्यादा विस्तार दे रही है।
1: पॉलीग्रीन की टीमें रविवार सुबह से ही घटनास्थल पर तैनात रही। कंपनी ने पानी से तेल और मलबे को हटाने के लिए आवश्यक उपकरण भी उपयोग किए। युधिष राम भरत ने कहा, करीब 250 से 300 मलबे इकट्ठा किए गए हैं, अब तक सब नियंत्रण में है। ये आश्वासित करेंगे कि तेल घेरे से बाहर न जाए।
2: De l'huile qui est non tout under control. L'équipe là pour qui nous make sure qui peine aucun de l'huile qui sorti en dehors bah hier y a des hauts.
1: वहीं दूसरी ओर इंजन लिमिटेड ने कहा कि वो सुनिश्चित कर रही हैं कि सफाई कार्य पूरा हो और भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। इंजन पेट्रोलियम के अध्यक्ष क्रिस लक्ष्मी नारायण ने कहा, जैसे ही पूर्ण सफाई हो जाएगी 10 दिनों तक एक फॉलोअप होगा और संबद्ध लोगों को एक रिपोर्ट सुपुर्द की जाएगी, पर्यावरण मंत्रालय को भी, ताकि स्थल की स्थिति के बारे में सूचित की जा सके। कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ कल सुबह एक मुलाकात की जाएगी और इस हादसे के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।
3: On va analyser la cause.
1: सफाई अभियान आने वाले दिनों तक जारी रहेंगे और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच भी शुरू कर दी गई है।
0: और जिस तरह से हमने इस बात की चर्चा की है कि देश में पेनल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से आंकड़े दर्शाते हैं कि दर्ज किए गए 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से संबंधित हैं। इसलिए मंत्रिमंडल ने पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत ऐसे अपराधों के लिए सजा और सख्त करने की मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के अनुसार ऐसे अपराध के लिए पॉइंट 5 से बढ़ाकर 10 किए जा रहे हैं। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से अधिकारियों ने एक बढ़ती हुई समस्या पर ध्यान दिया है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग। दर्ज की गई 6400 यातायात उल्लंघनों में से लगभग 17% मामले इसी से जुड़े हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। कैबिनेट ने पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत दंड को और सख्त करने को मंजूरी दे दी है। 50-60% लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल, बस, लॉरी सब में देखा गया है, खुद की, अपने परिवार की और दूसरों की जान जोखिम में डालती हैं। रास्ते पर बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, खासकर फोन के कारण। सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, सोचता हूँ अच्छा फैसला है। चालकों से अपील करूंगा, खासकर बस ड्राइवरों से बहुत सावधान रहना चाहिए। कई लोगों की जानें हमारे हाथों में होता है, हमारी भारी जिम्मेदारी होती है। नई व्यवस्था के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर मिलने वाले पेनल्टी पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए जाएंगे, जबकि पहले ये 3 से 6 अंकों के बीच था। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा, सभी जानते हैं कि जब ड्राइवर मोबाइल का उपयोग करता है तो खुद की और दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए कैबिनेट ने अंक बढ़ाने का फैसला किया। अब ये 5 से शुरू होता है, 28 दिनों में अदायगी नहीं की गई तो 10 अंक हो जाएंगे और जुर्माना भी दुगना हो जाएगा। ये स्पष्ट करूंगा कि 33 उल्लंघनों के लिए जुर्माना नहीं बढ़ा है, केवल अंक बढ़े हैं। अतः गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग न करें। इस कदम का उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। ये उल्लेख्य है कि इस साल के जनवरी महीने से पेनल्टी पॉइंट्स प्रणाली लागू होने के बाद से सड़क सुरक्षा के आंकड़ों में सामान्य स्थिरता देखी गई है। सरकार अगले सप्ताह से रोड ट्रैफिक एक्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि ये नया प्रावधान जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कल 11 मई से केन्या की राजधानी नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन शुरू होगा। वहां अंतिम तैयारियां पूरी की जा रही है। इस महत्वपूर्ण अफ्रीका फ्रांस सम्मेलन में कई देशों के राजनीतिक नेता, निवेशक, आर्थिक ऑपरेटर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दो दिनों के दौरान चलने वाली चर्चाओं में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, युवा रोजगार और अफ्रीकी महाद्वीप के सामने संप्रभुता को लेकर मौजूद चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच ये अफ्रीकी महाद्वीप के लिए संबंधों और सहयोग को ज्यादा मजबूत करने का एक मौका रहेगा। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
4: सम्मेलन कक्ष में अफ्रीकी और फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडलों के आगमन से पहले इस बड़े आर्थिक और राजनीतिक आयोजन की अंतिम तैयारियां जारी हैं। ये शिखर सम्मेलन 7 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रहेगा: ऊर्जा परिवर्तन, वित्तीय संसाधनों का जुटाव, ब्लू इकोनॉमी, टिकाऊ कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य प्रणालियों की मजबूती और साथ ही अफ्रीका में शांति और सुरक्षा। 11 मई का दिन इंस्पायर एंड कनेक्ट विषय के अंतर्गत एक व्यापारिक मंच के साथ शुरू होगा, जिसमें फ्रांस और अफ्रीका के आर्थिक साझेदारी संबंधों की गहराई को उजागर किया जाएगा। 12 मई को अफ्रीकी राजनीतिक नेताओं की बैठक आयोजित होगी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों भी उपस्थित रहेंगे। ये बैठक मुख्य रूप से विकास की फाइनेंसिंग और वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित रहेगी। युवाओं की शिक्षा और रोजगार, संप्रभुता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़े मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में होंगे। साथ ही अफ्रीकी संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी विचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए विदेशी मीडिया भी सक्रिय हो चुकी है। नैरोबी की सड़कों पर केन्या में अपेक्षित कई खास हस्तियों के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के कुछ निष्कर्ष आगामी G7 शिखर सम्मेलन की तैयारियों में भी शामिल किए जाएंगे, जिसकी मेजबानी फ्रांस 15 से 17 जून तक करेगा।
0: नई दिल्ली में 7 से 8 मई को बदलती दुनिया में हिंद महासागरीय क्षेत्र विषय पर 10वां इंडियन ओशन डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल ने किया। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य हिंद महासागर इलाके में महत्वपूर्ण विकास और बदलाव तथा उभरती चुनौतियों पर चर्चा करना रहा। पॉल बेरांजे ने कल आधिकारिक तौर पर अपने नई पार्टी फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस की लॉन्चिंग की। वाक्वा नगरपालिका में लगे इस एक जुटाव के दौरान एमएमएम के पूर्व लीडर ने इस पार्टी के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया और आने वाले कुछ महीनों के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया। नौजवानों को कृषि और ब्लू इकोनॉमिक क्षेत्रों की ओर कैसे आकर्षित किया जाए, मोंट्रेजो में लॉन्च किए गए नेशनल यूथ चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड फोरम का उद्देश्य इसी नई गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट यूथ सर्कल FAO द्वारा समर्थित और सतत परियोजनाओं पर केंद्रित इस परियोजना से लाभ उठा रहा है। उद्घाटन समारोह के मौके पर उपस्थित डॉ. अरविंद बुलेल ने सतत कृषि खाद्य क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में एक संरचित दृष्टिकोण की उम्मीद जताई। 1 मई से बिजली के टैरिफ में 15% की वृद्धि लागू होने के बाद से कई मॉरिशन निश्चित रूप से अपना बिजली इस्तेमाल कम करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपना रहे हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो या फिर स्टैंडबाय मोड पर रखे जाने वाले उपकरण को लेकर हो। रोजमर्रा के जीवन में कुछ विशेष आदतें अपनाने से बिजली बिल कम जरूर की जा सकती हैं। ज्यादा विस्तार गीता सुनारायण के साथ।
4: पहली मई से बिजली 15% महंगी हो गई है। ऐसे में यदि आप हर महीने लगभग 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो अब तक आप करीब 1200 रुपये का भुगतान करते थे, लेकिन अब आपकी खपत के अनुसार बिल लगभग 1400 रुपये तक पहुंच सकता है। ऐसे में बिजली का बिल देखकर झटका न लगे, इसके लिए एक ही उपाय है, बिजली की बचत।
5: Depuis dernier bill, nos billings bien augmenté parce que nous savions qu'on et tout. Mais heureusement que côté climat, l'hiver est rentré.
6: Je fais attention, on ne va pas perdre sa vie, faire beaucoup gaspillage parce que ce n'est pas facile pour gagner.
4: आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। उदाहरण के लिए फ्रिज को ज्यादा देर तक खुला छोड़ने से गर्म हवा अंदर चली जाती है, इसके बाद फ्रिज को फिर से ठंडा होने के लिए अधिक बिजली खर्च करनी पड़ती है। यदि फ्रिज को एक मिनट तक खुला छोड़ दिया जाए तो ऊर्जा की हानि 10 गुना तक बढ़ सकती है। सुझाव है, फ्रिज खोलने से पहले तय करें कि आपको क्या निकालना है। फ्रिज के दरवाजे की रबर सील की जांच करें। इलेक्ट्रिक शावर आपकी कुल बिजली खपत का 30-50% तक हो सकता है। हर रोज 10 मिनट तक इसका उपयोग करने से लगभग 30 किलोवाट घंटा बिजली हर महीने खर्च होती है। सुझाव है, नहाने का समय 10 मिनट से घटाकर 5 मिनट करें, तापमान कम करें, साबुन लगाते समय पानी बंद कर दें। एयर कंडीशनर यानी एसी सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, ये प्रति घंटे 800 से 2000 वाट तक बिजली खर्च कर सकता है। तुलना के लिए कहें तो ये लगभग 40 लेड बल्ब एक साथ जलने जितनी खपत है। सुझाव है, एसी को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, फिल्टर की नियमित सफाई करें, इससे लगभग 15% तक बिजली बचाई जा सकती है। इसके मुकाबले पंखा कहीं ज्यादा किफायती विकल्प है, क्योंकि वो एसी की तुलना में 10 से 20 गुना कम बिजली खर्च करता है। सुझाव है, रात में पंखे का ज्यादा उपयोग करें, ताजी हवा आने के लिए खिड़की थोड़ी खुली रखें ताकि कमरा गर्म हवा का चक्र न बन जाए, पंखे की नियमित सफाई करें। और जो उपकरण स्टैंडबाय मोड पर रहते हैं उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वे कुल बिजली बिल का 5-10% तक बढ़ा सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के निदेशक प्रोफेसर खलील इलाही कहते हैं, कुछ उपकरणों को स्टैंडबाय में रख सकते हैं, जैसे डिकोडर, क्योंकि रात के वक्त ऑटोमेटिक तरीके से रिप्रोग्रामेशन होता है, नए जेनरेशन के डिकोडर ऐसे नहीं हैं। सुझाव है, स्विच वाली मल्टीप्लग का उपयोग करें ताकि सभी उपकरण पूरी तरह बंद किए जा सके। वॉशिंग मशीन चलाते समय कोशिश करें कि मशीन पूरी भरी हो ताकि कम बार उपयोग करना पड़े। इस्त्री करते समय सारे कपड़े एक साथ प्रेस करें और काम खत्म होते ही प्लग निकाल दें। आजकल काफी लोकप्रिय एयर फ्रायर लगभग 20 से 30 मिनट के उपयोग में 0.4 से 1 किलोवाट घंटा बिजली खर्च करता है, यानी छोटे इलेक्ट्रिक ओवन के बराबर। बिजली की खपत कम करने के लिए खाना पकाते समय इसे बार बार खोलने से बचें। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, ज्यादा किफायती क्या है, बल्ब या ट्यूब? जवाब है दोनों, बशर्ते कि वे लेड हों। प्रोफेसर खलील इलाही कहते हैं, लेड यानी लाइट इमिटिंग डायोड जो बहुत ही अच्छा है। अब टाइमर्स भी हैं, ये ऐसे गैजेट्स हैं जिनका उपयोग करना ज्यादा आसान है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पहली मई के बाद से बिजली की खपत में कमी आई है, जिसमें मौसम के ठंडा होने का भी योगदान है। बिजली की बचत की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है।
0: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की दिशा में देश के पूर्वी इलाके खासकर काहोलिन गांव में आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गहलोत राजपूत महासभा के अध्यक्ष के अनुसार मॉरिशन सरकार इस महान योद्धा के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर देश में राजपूत संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन कर रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रात केन्या

0: खासकर नैरोबी के लिए रवाना हो रहे हैं। वे वहां अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का विषय अफ्रीका फॉरवर्ड रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस और अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। सम्मेलन में नवाचार यानी कि इनोवेशन, आर्थिक विकास, युवाओं के भविष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर बात होगी। प्रधानमंत्री ब्लू इकोनॉमी पर एक गोलमेज की सह अध्यक्षता संभालने वाले हैं। साथ ही मॉरिशस के निजी सेक्टर का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी बिजनेस फोरम में शामिल होगा। इस दौरे का लक्ष्य अफ्रीका के साथ मॉरिशस के आर्थिक और राजनयिक संबंधों को और बेहतर बनाना है। ये शिखर सम्मेलन फ्रांस और मॉरिशस सहित अन्य अफ्रीकी देशों के बीच नए और महत्वाकांक्षी संबंधों को विकसित करने का एक उपयुक्त मंच है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियान नवामारी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगी। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कैट्रोबो नगर पालिका में आज वॉइस ऑफ हिंदू के सदस्यों की बैठक लगी, जिसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव समिति का चुनाव किया गया। इस मौके पर संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अपनी शाखाओं के सदस्यों को सम्मानित भी किया, साथ ही भावी राष्ट्रीय बजट को लेकर विचार प्रस्तुत किए गए। वॉइस ऑफ हिंदू पेंशन प्रणाली पर फिर से गौर किए जाने की मांग कर रहा है, खासकर स्कैवेंजिंग और निर्माण कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लिए। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: वॉइस ऑफ हिंदू के प्रतिनिधियों की सभा के दौरान बजट 2026-2027 के संदर्भ में कई प्रस्ताव रखे गए। अध्यक्ष कृत मनोहर ने कहा, सरकार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रही है। नौजवानों को एक आवास प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करना चाहिए, कृषि की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि आज खाद्य संबंधी कई कठिनाइयां हो रही हैं। सरकार से मांग है कि वे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए फिर से पेंशन पर गौर करें। इस अवसर पर संगठन के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति दोहराई गई। देश भर के विभिन्न शाखाओं से जुड़े सदस्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बच्चों के साथ मानव मूल्यों पर काम करता था, खासकर वे बच्चे जो कम सीन उम्र में स्कूल छोड़ चुके थे। इस पुरस्कार समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में सदस्यों के प्रति आभार जताया गया, खासकर संस्कृति, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि विदेशी स्तर पर भारत में खासकर साउथ के स्टॉप विजय ने आज तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ग्रहण की। अपने प्रथम भाषण में उन्होंने राज्य में भारतीय संविधान की रक्षा और ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ काम करने का वादा किया। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आउट ऑफ लिविंग के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया। यह विशेष समारोह संगठन की स्थापना की वर्षगांठ और संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया गया।
2: बेंगलुरु में आउट ऑफ लिविंग का नया ध्यान मंदिर मेडिटेशन और होलिस्टिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित एक विशेष केंद्र है। आउट ऑफ लिविंग की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस ध्यान मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस समारोह में भाग लेते हुए मोदी जी ने आउट ऑफ लिविंग संगठन द्वारा आयोजित की जा रही कई राष्ट्रव्यापी गतिविधियों की लॉन्चिंग की। इनमें मानसिक स्वास्थ्य अभियान, गांवों में विकास परियोजनाएं, प्राकृतिक संरक्षण कैंपेन्स तथा सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। अपने संदेश में मोदी जी ने कहा कि अगर विजन स्पष्ट है और कार्य सेवा भाव से किए जाएं तो परिणाम सकारात्मक ही होता है।
3: जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया।

0: जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है।
1: साथ ही उन्होंने भविष्य निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।
0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो।
2: और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे इलाके को प्रभावित करने लगेगा अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात हवाई ढलानों पर बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी। कल सुबह पूर्व, दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर हल्की सी बारिश होने का अनुमान है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर 50 सेंटीमीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 5:43 पर जबकि कल सूर्योदय लगभग 6:30 बजे

तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। जोली स्ट्रीट कैट्सियर में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुविना दोवारा का प्रसाद पैदाशी नाम मंगत रॉय और जिन्हें सब लोग सुविना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर जोली स्ट्रीट कैट्रोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए देफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। इलो कॉन्डियाब में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती केसिया जिन्हें सब लोग लीलो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री आनंद शुरुदीन के घर इलो कौंजाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाबला की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। दुखी रोड ग्रैंड रिट्रेट में 28 साल की 28 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विदुषा रितु पैदाइशी नाम सिगुलाम और जिन्हें सब लोग विदु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनके पति श्री अक्षय रितु के घर दुखी रोड ग्रैंड रिट्रेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनाकर की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: नहीं सो।
1: हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग आप सभी को। और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूँ दिविना, लेकर आई हूँ एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और साथ में जिंदगी को सकारात्मक, पॉजिटिव नज़र से देखने का एक खूबसूरत अंदाज। कार्यक्रम है नई सोच। अब इसे लेकर रात्रि के 7 बजे तक हम बात करेंगे उन विचारों की जो मन को हिम्मत दें, दिल को सुकून दे, साथ ही जिंदगी को नई दिशा दे। तो चलिए मुस्कुराइए, क्योंकि हर नया दिन एक नई शुरुआत कर आता है और हर रात्रि के बाद नया दिन आता है। वैसे कहते हैं समय जो है चलता रहता है और हम इंसानों को समय के साथ साथ चलना चाहिए। बस ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में।

नई सो। छह बजकर 42 मिनट हुए हैं। बस दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तो हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में उम्मीद का दीप जलाए रखता है, वही असली विजेता कहलाता है। वैसे कहते हैं, अगर सूरज की तरह चमकना हो, अगर सूरज की तरह चमकना हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। हाँ जी, हार मान लेना आसान है, लेकिन कोशिश करते रहना ही इंसान की असली ताकत है। और जिंदगी में आपके हिस्से में दर्द भी आएंगे, खुशियां भी आएंगी, तन्हाई भी आएगी। बस अगर कभी तन्हा लगे, गा लीजिए, गुनगुनाइए, मन हल्का हो जाएगा।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Nee so.

जादू सु नई सोच प्रोग्राम में देवीना है आपके संग 7 बजे तक और 7 बजे के बाद हम और आप मिलेंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के अंतर्गत। वैसे कभी कभी लोग हमें कमज़ोर समझ लेते हैं, लेकिन याद रखिए शांत रहने वाला इंसान हमेशा कमज़ोर नहीं होता, वो बस अपने समय का इंतज़ार कर रहा होता है। द राइट टाइम, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि दुनिया तभी भरोसा करती है जब आप खुद पर करते हो। जिस दिन आपने अपनी काबिलियत पहचान ली, उस दिन किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी और सपना जो है आपका ज़रूर साकार होगा। बस अपने आप पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते चलिए।

जहाँ दोस्तों खुश रहना भी एक कला है और दूसरों को खुश रखना सबसे बड़ी इंसानियत। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखिए क्योंकि यही जिंदगी की असली दौलत है। इंसान बड़ा अपने पद से नहीं अपने व्यवहार से बनता है। दोस्तों आज की इस प्रेरणादायक शाम में बस इतना ही। याद

रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़ा मौका नहीं, एक अच्छी सोच ही काफी होती है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, फिर मिलते

0: दिलों की आवाज
1: जी हाँ, राधे के साथ बजकर 8 मिनट हुए हैं और हम दिन भर आपका साथ दे रहे थे, अब रात में आ गए हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है तो आ जाते हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। हेलो जी, फिर से नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। और रेडियो मनोरंजन ऑरेंज फ्री पर आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में। और लगभग पूरे 2 घंटों तक हम साथ बिताने वाले हैं यादों, संगीत और खूबसूरत एहसासों से भरी एक शानदार शाम। कार्यक्रम है दिलों की आवाज़। आज की सुहानी रविवार शाम में हम सुनेंगे स्पेशली 80s और 90s के सदाबहार गाने, जो कभी प्यार बनकर दिल में उतरते हैं, कभी दोस्ती की याद दिलाती हैं और कभी जिंदगी को मुस्कुराना सिखा देती हैं। तो तैयार हो जाइए पुरानी यादों को, यानी कि हसीन यात्रा के लिए, जहां हर गीत दिल की धड़कन बन जाएगा। और शुरुआत करते हमने कर लिया है फिल्म आतिश के साथ, प्यार भरा गाना था। और अगला गाना जो है फिल्म है दयावान, पंकज उदास साहब साथ में अनुराधा पोडवाल। अगर आपको डेडिकेशंस करने हो तो 4028070402 8070 पर हमसे बातें कर सकते हैं। साथ ही मैसेजेस के लिए 5250 6200 5250 6200। सो आज की रात है देवीना आपके संग और अगले गाने को एंजॉय कीजिए। तब तक हम अपने श्रोताओं से बात करने वाले हैं, मैसेजेस पढ़ने वाले हैं।

बैटरी के साथ बजकर 22 मिनट हुए हैं। ऐसे गाने ऐसे बोल का क्या कहना, बस यहाँ पर ओनली ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। वैसे कहते हैं ऐसे गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते 80s और 90s के, बल्कि और करीब हो जाते हैं दिल के। दोस्तों, जिंदगी की ये जो रूटीन लाइफ है ना, अगर कुछ सुकून देता है तो वो है अच्छा संगीत। और 80s 90s का संगीत तो जैसे आत्मा की आवाज़ था ना। अब पेश है एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना, मगर ये 90s के ऊपर वाला गाना है, ख़ास तौर पर किसी के बर्थडे पर। तो प्रवीण गुरन सिंह जी मना रहे हैं अपना बर्थडे। प्रवीण गुरन सिंह जी को बेस्ट विशेस फ्रॉम द होल गुरन सिंह फैमिली, स्पेशली फ्रॉम वाइफ शर्मिला, बच्चे हैं रक्षा एंड सत, सभी भाई बहन और पूरा परिवार एंड फ्रेंड्स की ओर से प्रवीण जी आपको हैप्पी बर्थडे। खुशियां हो आपके लिए, गुड हेल्थ एंड बी हैप्पी ऑलवेज। और साथ में ये गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे पॉल और जे के छोटी जी के लिए, ऑल्सो फॉर हरीश जी और बुबा सैन, ललिता दीदी एंड आत्माराम भैया, अपने तो अपने होते हैं।

राठी के साथ बज करके 30 मिनट हुए हैं दोस्तों, और आपके फोन्स के लिए, आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। सो बस अब एक रिक्वेस्ट की ओर बढ़ते हैं। फिल्म है राजा भैया और ये गाना स्विनल की ओर से है, और ये गाना जाएगा भाई श्रवण के लिए, भाभी कृति, अभिनव, कियान, अनव्या और तिलक फैमिली के लिए, ऑल्सो फॉर अंतिश एंड आरजे हंसिनी के लिए ऑफ कोर्स। सो हमारे जितने दोस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जितने कॉलीग्स हैं हमारा साथ दे रहे हैं रात के समय, और जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं डिनर लेते समय, सो बन अपेक्षी शुभ आहार आप सभी को। और इस गाने को एंजॉय कीजिए, राजा भैया मूवी का गाना है उदित नारायण साहब की आवाज़ में, और साथ में अलका याग्निक का स्विनल आपके लिए।

0: RM3 Radio.
1: हाँ जी, आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज ओनली ऑन ओनली RM3 रेडियो मनोरंजन पर। वैसे प्यारे दोस्तों, प्यार का एहसास शब्दों से नहीं बल्कि गीतों में ज्यादा खूबसूरती से महसूस होता है। और अब एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, 90s का वो फेवरेट गाना हमारा भी था। और इस फिल्म को हमने बार बार देखा है, कई बार देखा है। हम बात कर रहे हैं फिल्म इम्तिहान की। फिल्म इम्तिहान जिसमें नज़र आए थे स्टॉकहाउस, रवीना टंडन, सैफ अली खान और साथ में थे सनी पाजी। और फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए थे और कहानी भी लोगों को पसंद आई। और ये फिल्म जितनी बार देखा जाए उतना कम है और आप बोर नहीं होंगे तो ज़रूर देखिएगा इम्तिहान मूवी। और अभी के लिए इसी फिल्म का ये टाइटल वो गाना है कुमार सानू साहब की आवाज़ में, और इस तरह आशिकी कहा। जी हाँ, हम साथ साथ में गुनगुनाएंगे। और ये पेशकश जो है स्पेशली हम करेंगे नमस्ते आपको भी अनीता जी फिकॉन फ्लैग, फिर से एक बार नमस्ते। हमें बहुत अच्छा लगा आपको फिर से सुनने को, थैंक यू सो मच। सो पति राज, बेटे अंतिश, अंकुश, बहू मनीषा, आशिमा, पोती हैं हिमेशा, आधिया, पोते हैं अंश, हमारे लिए भी थैंक यू सो मच। सो बस सभी रेडियो मनोरंजन की टीम के लिए थैंक यू, और सभी लिसनर्स के लिए हो जाए ये प्यारा सा गाना। और साथ में शुमे गुए की ओर चलते हैं, वहाँ पर हैं श्यामा जी। तो श्यामा जी एक गाने की मांग नहीं कर रही हैं, डेडिकेशन दे रही हैं पूरे फैमिली के लिए। संजना है, ग्रैंड सन जेविन, डॉटर हाँ दो करुणा है, सन इन लॉ है राजेश, यति, और साथ में श्यामा जी आपके लिए भी पूरे परिवार के लिए सभी फ्रेंड्स के लिए।

सादचकर सैतालीस मिनट हुए हैं, बस आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। जिंदगी में खुश रहना है तो दोस्तों, बीते हुए कल को मुस्कुराकर याद कीजिए और आने वाले कल का विश्वास बनाए रखिए। और क्या दौर था 80s 90s, गीतों में सादगी थी, अल्फाज में मिठास थी और संगीत सीधे दिल तक पहुंच जाता था। अब वक्त है बस एक थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी धड़कनों को तेज़ करने वाला जो गीत है, और ना 80s में कदम रखते हैं। शारण प्रभाकर साथ में बपी लहरी साहब का संगीत, साथ में उनकी आवाज़ भी, फिल्म है और अरमान, और इसमें नज़र आए थे राज बब्बर साहब, आपको याद है ना। तो बस इस गाने को आप गुनगुनाइए, डांस कीजिए, और स्पेशली इट गोज़ टू इब्राहिम जी आपके लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: ला ला ला ला ला ला ला। हाँ जी, शरण प्रभाकर थी, अब चली गई। और वैसे आपको पता ही है ये कार्यक्रम चलता है 9 बजे तक। वैसे दोस्तों, संगीत जो म्यूजिक है सिर्फ मनोरंजन नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि भावनाओं की भाषा है। कभी ये हंसाता है, कभी रुलाता है, और कभी पुरानी यादों से मिला देता है। जैसे कि अब हम चलेंगे 90s की ओर, 1994 की ओर, और ये जो फिल्म है हम बात कर रहे हैं मोहरा। इसमें नज़र आए थे नसीरुद्दीन शाह, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी साहब, अक्षय कुमार साहब। और इस फिल्म में एक्शन, वाओ, गाने कमाल के थे। और अगला गाना जो है पंकज उदास साहब साथ में साधना सरगम, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कौन सा गाना है। और ये जाएगा स्पेशली, जी हाँ, फिर से नमस्ते एंड गुड इवनिंग देवीना जी, आपको भी फिर से नमस्कार और गुड इवनिंग। आप हैं ज्ञान बिहारी जी, यू आर डूइंग डबल शिफ्ट। हाँ जी, आज डबल शिफ्ट है और आप सबों का साथ देकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तो बॉन कुराज, थैंक यू सो मच। और ये गाना जाएगा फॉर ज्ञान बिहारी जी, अपनी वाइफ के लिए सबिता के लिए भी मांगा है और बिहारी फैमिली के लिए भी। और मालिनी जी हैं मोडालबिया की, और आई एम श्योर कि ये जो गाना है हम अपने आईटी सेक्शंस को बताएंगे जो गाना आप मांग रही हैं। सो फिलहाल इस गाने में आपका नाम जोड़ते हैं मालिनी जी, साथ में है बेटी छाया। और मालिनी जी सभी को, कल है मंडे तो हैप्पी मंडे कह रही हैं, क्योंकि मंडे को काम पर जाना, स्कूल जाना इतना डिफ़िकल्ट लगता है कि क्या कहें। बस वो को आज आप सभी को, जितने लोग नौकरी पर जाएंगे, जितने लोग स्कूल या कॉलेज जाएंगे, और जितनी जो मम्मीज़ हैं घर पर रहेंगी, जितनी हाउसवाइफ जैसे कहते हैं ना घर पर रहेंगे, होममेकर जो हैं। और वैसे जैसे हमने दिन में बताया था कि आज है इंटरनेशनल लेवल पर मदर्स डे, सो आप सभी मम्मीज़ को, प्यारी प्यारी मम्मीज़ को हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, लव यू ऑल। तो ये गाना आप सबों के लिए मोहरा फिल्म का।

चलिए इसमें नाम जोड़ते हैं सूरज का, सूरज शर्मा सजदा फ्रॉम टियोली, लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल शो. थैंक यू सो मच सूरज जी.

0: दिलों की आवाज
1: जो वेलकम बैक दिलों की आवाज प्रोग्राम के अंतर्गत और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर हो चुका है अभी के लिए रात्रि के 8:04 9 बजे तक चलने वाला है हमारा और आपका साथ और ब्यूटीफुल सा जो प्रोग्राम है आप एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और लगता है कि आज बहुत से लोग जो हैं मैच देख रहे हैं, फुटबॉल मैच, तो आप एंजॉय कीजिए। कुछ लोग टीवी देखकर भी रेडियो, उन्होंने रेडियो ऑन किया है, तो थैंक यू सो मच। मैं भी जब घर पर होती हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी चल रहा होता है वहाँ पर और यहाँ पर रेडियो, और क्या करें, जो म्यूज़िक लवर्स होते हैं ना, जो फिल्मों के दीवाने होते हैं, सो जहाँ भी जब भी समय मिले तो वी एंजॉय एवरीथिंग, गाने भी और फिल्म भी। फिलहाल गाने चला रहे हैं अभी के लिए, ये प्यारा सा गाना भूपिंदर साहब की आवाज़ में, इट गोज़ स्पेशली फॉर साजिद जी।

जी हाँ, फिल्म दरार से लिया गया एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना गुलशन जी की मांग पर। हेलो गुलशन जी, सो ये गाना मम प्रभा के लिए, सिस दीक्षिता, आयशा और भोला फैमिली के लिए, और हमारे लिए भी थैंक यू, एंड और जेहान सिने के लिए। एंजॉय इट गुलशन जी, थैंक यू।

चलिए इस गीत में नाम जोड़ते हैं सुदेवी जी और वाकवा और साथ में जाएगा ट्रियोले की दीदी ललिता कुशल फैमिली के लिए वंश वैभव वीर वर्षा विमल विजयन दादी सुनीता निया और सभी परिवार के लिए हमारी टीम के लिए भी थैंक यू सो मच हैव अ वंडरफुल नाइट

0: RM3 Radio.
1: रात के 8:19 हुए हैं. अगला गाना जो है कविता जी की ओर से मोचिदा से है, सहेली अनीता के लिए, सुबिता के लिए. फिल्म अंदाज से लिया गया ये गाना. किसी से तुम प्यार करो तो क्या होगा, बस सुनते हैं कुमार सानू साहब की आवाज में, साथ में अगय अग्नि

टाइम हो चुका है 8:25। वक्त कितनी जल्दी भाग रहा है कि क्या कहें बस, पर आप लोग साथ दे रहे हैं और हमें खुशी होती है ये जानकर कि दिन में भी आप साथ देते हैं और रात में भी। कितने लोग जो होते हैं बेकरार होते हैं ये गाने सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हमारे जो सभी ऑडियंस हैं यहाँ पर दिल से काम करते हैं आप सबों के लिए। सो बस आज की रात देवीना है आपके संग 9 बजे तक। 80s,

इज अर्ली 2000s के गाने की सबसे खास बात यह है कि उनकी सिंप्लिसिटी, हर गीत में कहानी थी, एहसास था, अपनापन था ना। अब पेश अगला गाना जो है फिल्म धड़कन से लिया गया, और ये गाना अपने ज़माने में कितना फेमस हुआ करता था और आज भी जब अभिजीत साहब की आवाज़ सुनते हैं ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, वाह वाह। अक्षय कुमार साहब साथ में सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी, प्यार लव ट्रायंगल, और ये फिल्म हिट हुई थी और इनके गाने कमाल के थे। तो अभिजीत साहब साथ में अर्का याग्निक, तो ये गाना जाएगा स्पेशली नंदा जी की मांग पर। नंदा जी ऑफ बाय, नंदा जी नमस्कार, और वे चाह चाह कर बातें करती हैं, अच्छा लगता है आपसे बात करना नंदा जी, हमें भी अच्छा लगता है जैसे कि आपको अच्छा लगता है हमसे बात करके। सो ब्लेसिंग्स टू आशील, उनके जो बेटे हैं उनकी नई नई शादी हुई है, बेस्ट विशेज टू आशील, और बहू हैं नई बहू दिव्या, तो उनके नाम जाएगा ये गाना। साथ में अविनाश के लिए अश्विना है, गुलू अरवी, और सभी पुनीता फैमिली, गणेश फैमिली, और ख़ास तौर पर हमारी जो दोस्त है, सहेली है सुरेखा, यहाँ पर काम करती हैं, तो नंदा जी की ओर से सुरेखा के लिए, हमारे पूरी टीम के लिए, हमारे लिए भी थैंक यू, तो हमारी पूरी टीम के लिए जो आपसे बातें करते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, उन सभी के लिए नंदा जी की ओर से ये गाना। और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे रेहाना जी के लिए भी और फिनिक्स। और भगवत जी की मांग पर ये जो गाना है उनके जो दोस्त हैं कानन, राजेश और महादेव के लिए, साथ में सभी प्यार करने वालों के लिए।

8:33 हुए हैं। अगर इस वक्त आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ हमारी महफिल का आनंद ले रहे हैं डिनर टाइम, आप कुछ लोग बहुत जल्दी ही सवेरे ही डिनर ले लेते हैं, जैसे 6:30, 7:00, कुछ लोग लेट डिनर लेते हैं अभी का समय है या 9:00 के बाद। और जब भी आप डिनर लो तो बस हम आपको याद कर रहे हैं और गाने सुन सुनकर आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गाने सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो मुस्कुराइए क्योंकि संगीत दिलों को जोड़ने का सबसे सुंदर जरिया है मेरे दोस्त। वैसे कहते हैं हर दिन जिंदगी हमें एक नया गीत सुनाती है, जरूरत है सिर्फ उसे दिल से सुनने की होती है। तो बस एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना खूबसूरत गाने की ओर बढ़ते हैं। फिल्म है मर्डर 2, एक्चुअली ये 2000 के ऊपर का गाना है, मोहम्मद इरफान साथ में साइम भट्ट, और ये गाना विजया की ओर से विजय ने मांग की है, वाकवा की विजया जी। वे कह रही हैं वाव आई जस्ट लव दैट सॉन्ग, दिल ढूंढता है, थैंक यू सो मच। और अगर यू कैन प्ले एनी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मर्डर 2, सो बस ये गाना आपके लिए हम पेश करने वाले हैं।

जी हाँ आदर्शकर, 48 मिनट हुए हैं, थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। सो जाते जाते ये गाना हम पेश करने वाले हैं आप सभी के लिए, स्पेशली जो है फॉर हरीश बाबू, मैंने प्यार किया, एसपी बालासुब्रमण्यम, साथ में लता जी। और ये गाना हम इसमें नाम जोड़ेंगे राधा जी का। तो धीरे धीरे आज की हमारी महफिल अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि आज के मधुर गीतों में आपकी शाम को खूबसूरत बना दिया होगा, पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया होगा और दिल को मुस्कुराने का एक प्यारा सा बहाना दिया होगा। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे, संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जहाँ संगीत होता है वहाँ खुशियाँ खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। सो इसी के साथ कार्यक्रम दिलों की आवाज़ समाप्त होने वाला है। आपको दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, थैंक यू अपने कीमती समय निकाल कर इस खूबसूरत शाम में हमारा साथ देने के लिए। फिर से मिलने वाले हैं अगले रविवार को 12 बजे से 3 बजे तक सुहाना सफ़र प्रोग्राम में, नई बातों के साथ, नई यादों के साथ और शानदार गीतों के साथ। तो इस गाने के बाद एक और गाना चलने वाला है परदेस मूवी का, और ये गाना जाएगा स्पेशली मोडाल बिया के प्रीतम जी और ख़ास तौर पर संध्या जी के लिए एंड पूरी एमबीसी टीम के लिए। सो दोस्तों, आप सबों को हम कहेंगे जो आने वाला जो सप्ताह है खुशगवार हो, बोन कुराज, शुभ रात्रि, लव यू ऑल।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का
2: तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
1: गमन जलसा हंगामा।
2: भोजपुरी तड़का
3: रविवार 10 मई घड़ी मिला लीजिए रात के 9:02 होता है। रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आप सबको के स्वागत बात है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। आप सबको के पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का लेके चला है जहाँ आप सबको के साथ दे के आप सबको के मनोरंजन करे के अभी से लेके रात के 11 बजे लेक। तो कैसे हवा जा? अच्छा हवा जा ना। और आशा करते है जो सप्ताहांत रहल, जो वीकेंड रहल अच्छा से बीतल और रविवार के दिन है और यहाँ पर ही परिवार के संगे मिल के हमने के संगे जुड़ल हवा जा। आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से लेके रात के 11 बजे लेक हो भरपूर मनोरंजन जलसा गमत हंगामा और भोजपुरी गीत सुने के खुशी रहें। तो सगबजा एक कार्यक्रम में भाग ले अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत के फरमाइश करे। हमने के नंबर तो याद बाना सगबजा हमने के टेलीफोन करे 4028085 पर, नहीं तो सगबजा मैसेज व्हाट्सएप करे 5251700 पर।
4: सलाम

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का
2: चल जाए यहाँ पर भोजपुरी तड़का एक कार्यक्रम शुरू हो गल बात है और यहाँ पर आप सबको एक फरमाइश जन हाँ हमने के मिला था और यहाँ पर अगला गीत खासकर कायरा खातिर हमने करब जा कायरा के जन्मदिन बातें कायरा आपके जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना मामा रीता और पापा कुनल की ओर से दादा विजय बेनी पौसाद की ओर से सब बेनी पौसाद परिवार सब बोने वाले परिवार की ओर से कायरा आपके जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक बधाई और ये जो अगला जन्मदिन के गीत है खासकर आपके खातिर और जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन MBC रेडियो के पूरा टीम की ओर से आप सबको के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना और ये गीत खासकर आप सबको खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: चरजा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हमनी के संगे जुड़ल हवा जा आप सबको के धन्यवाद। रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर ही कार्यक्रम चला था ये बखत और अगला गीत की ओर हमने बढ़ब जा। रामा राम तो हल जी के गावल गीत है जुबेदा और ये गीत खासकर लावेनीय के आफिस जी आपके खातिर आफिस जी भोजपुरी गीत सुने के खुशी रहेलन तो ये गीत खासकर उनकर खातिर और उनकर ओर से जितना श्रोता है बखत हमने के सुनत हवन सबको खातिर

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का। चलो चाहे यहाँ पर भोजपुरी तड़का में अगला चंद गीत है बिजमावती संपत जी के गावल गीत है और ये गीत के फरमाइश आल बाते मौदालबिया से मीराबाई जी की ओर से। मीराबाई जी बखत हमने के सुना था वन और ये गीत उनकर ओर से उनकर बेटी उनकर दामाद खातिर और ख़ास कर सब धर्मिया परिवार और सब पायदिया परिवार खातिर। तिसक बचा 4028085 पर हमने की टेलीफोन करे। तिसक बचा व्हाट्सएप करे 5251700005 पर।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का
2: जी हाँ, यहाँ पर ही अगला गीत की ओर हमने बढ़ अब

लीलो माथुर जी के गावल गीत है और ये जो अगला गीत है पीतों से अमृता जी की ओर से गीत के फरमाइश आल बातें और भोजपुरी तड़का में ये अगला गीत इन करोर से खासकर सोनिया खातिर परी खातिर विश्याम मीनाक्षी खातिर और पूनम खातिर और ये गीत इनकर पीतों के पूरा परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का चलिए भोजपुरी तड़का के दूसरे का घंटा में आप सबको एक स्वागत बात है। रात के 10:05 हो था और यहाँ पर ये बहुत बहुत धन्यवाद 4028085 और साथ ही 5251700005 पर आप सबको एक साथ हमने के मिला था। बड़ अब जामनी अगला फरमाइश की ओर अभिमन्यु हरपाल जी के गावल गीत है और ये जो गीत है खासकर एक फरमाइश आलबाते लाफ्लोरा से भाई राजन की ओर से सिया मांगे अयोध्या के राज और ये गीत इन करोर से सब लक्ष्मण परिवार खातिर।

रजा यहाँ पर अगला गीत जो है भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज़ के गीत है और ये गीत के फरमाइश आल बातें पालमा से माहिन जी की ओर से घर दामाद ये गीत उनकर ओर से सब जगमोहन परिवार खाते और खास कर उनकर दीदी मान खाते और जितना कोई भोजपुरी गीत सुने के खुशी रहलन ये गीत उनकर ओर से सबके खाते तो भूले या नहीं 4028085 है नंबर हमने के नेत सकबर जा व्हाट्सएप करें 5251700 5

0: भोजपुरी तड़का।
1: चले जा भाई बहन लोग, रात के 10:25 हो गल बातें बड़ अब जामनी अगला गीत के ओर। सुनीता ननकू जी के गावल गीत है और ये गीत के फरमाइश आल बातें फोंजी साख से रूपा जी की ओर से। रूपा जी खास कर ये गीत मंगले हवन अपन सब सहेली खातिर और सब रामचंद परिवार खातिर।

0: से ही। यस
1: भोजपुरी तड़का
2: चले जा भाई बहन लोग, देखते देखते रात के पौने 11 बज गल बाते और अभी भी हमने के जन श्रोता लगन हा हमने के संगे जुड़ल हवन जा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गीत धोती पोथी पगड़ी विक्रम कोलाचन जी के गावल गीत है। थ्रियोले से भाई बिहारी की ओर से गीत के फरमाइश आल बातें खासकर उनकर पूरा परिवार खातिर प्रीतम रतन और सब बिहारी परिवार। इ वक्त सुदेवी जी वाकवा से हमने के संगे जुड़ल हवन ये गीत उनकर दीदी लालिता खातिर सब कुशल परिवार खातिर। आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालिंगा से कृष्णी कृषय कृषिका लक्षिता सब राम रतन परिवार खातिर हमने के पूरा टीम खातिर और जितना कोई वक्त हमने के संगे जुड़ल हवन ये गीत उनकर ओर से सब कोई खातिर। परी गीत हमने करब जा मिला जी आपके खातिर जन इबकत हमने के सुना था वन।

0: भोजपुरी तड़का
1: तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
2: गमन जलसा हंगामा।
3: और ये गीत खास कर बोबासा के बसंती जी आपके खातिर।

भाई बहन लोग एक साथ जो है भोजपुरी तड़काई कार्यक्रम समाप्त हो जाए रात के 9 बजे से अभी लेक आप सबको एक साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 बजे जो है सक बजा सुने सुनहरे पली प्रोग्राम गिनीशा की प्रस्तुति में और रात के 12 बजे से काल फजील लेक आप सबको एक मनोरंजन खातिर गीत जो है यहाँ पर ही चलते रहे। तो हमने क्या आज्ञा था, नमस्कार शुभरात्रि आप सबको।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत पुराने नगमे। वैसे यादें कभी पुराने नहीं होती हैं दोस्त, और कुछ गाने कभी बुलाए नहीं जाते। रेडियो मॉरिशस पर सुनिए रहे सुनहरे पल, जहाँ हर धुन आपको ले जाएगी उन हसीन लम्हों में, पुराने बॉलीवुड गीतों के साथ एक खूबसूरत म्यूजिकल सफर में।

की शाम होगी सिर्फ आपके नाम, पुराने बॉलीवुड के उन अमर नगमों के जो आज भी दिल को धड़कन बनकर जीते हैं हम। तो जुड़े रहे हमारे साथ इन सुनहरे पल सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, और महसूस कीजिए म्यूजिक का असली सुकून। और अगला गाना सारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

0: दूसरा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ भी नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरीन, तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

जी हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कभी किसी गाने ने रुलाया है आपको, कभी किसी मेलोडी ने किसी अपने की याद दिलाई है, तो फिर सुनहरे पल आपके लिए ही है मेरी जान। पुराने गीत, खूबसूरत एहसास और यादों भरी शाम, और अगला नगमा सारे लवर्स के नाम जो बस किसी की यादों में खो चुके हैं।

रेडियो मॉरिशस से लेकर आ गई है एक ऐसी महफिल जहां सुर, जहां हर सुर में बसी होती है मोहब्बत, और हर गीत सुनाएंगे जिंदगी की एक कहानी, सुनहरे पल पुराने बॉलीवुड गानों के साथ। पुराने गाने के शौकीन हो ना आप, तो चलिए जी, ये नगमा खासकर आपके लिए और आपके परिवार वालों के नाम।

दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए मेरी जान, क्योंकि गीतों के जरिए हम आपके दिल की बात पहुंचा रहे हैं आपके चाहने वालों तक, क्योंकि शुरू हो चुका है आपके और हमारे बीच ये खूबसूरत सा सफर, सुनहरे पल जहां पुराने बॉलीवुड गाने फिर से सजाएंगे यादों की महफिल, आपकी यादों को चीरने के लिए गुस्ताखी माफ, लेकिन मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादें दोबारा याद करना कितना अच्छा लगता है।

लता जी की आवाज का जादू, रफी साहब के सुरों की मिठास और किशोरता, उनकी तो मस्ती कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ एक साथ सिर्फ सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर। और उम्मीद करते हैं कि आप हर एक गीत को दिल से एंजॉय कर रहे हो।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए ये गिरिशा को आप इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत गाने हम सुना रहे हैं कि हम खुद उसमें खोते चले जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हो चुका है टाटा बाय बाय बोलने का। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत सुनहरे पल में, जहां पे फिर से सजेगी खूबसूरत यादों का सफर। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।